0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के एफएम चैनल पर। श्रोताओं, आज का दिन है रविवार का। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तृतीय तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। घड़ी में 5:56 और 40 सेकंड्स हुए हैं। स्वागत है आपका हमारे केंद्र की प्रथम प्रसारण सभा में।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के एफएम चैनल पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र की नियमित प्रस्तुति वंदनवार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और DTH पर सुन सकते हैं और इसके अलावा एंड्रॉइड और iOS पर एक एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं।
3: ये है विविध भारती।
2: वंदन।

चिंतन। बाबा साहब अंबेडकर का कथन है, मनुष्य का जीवन महान होना चाहिए ना कि लंबा।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग झरोखा। सुनिए लिखा जोखा आज विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। श्री रामचरितमानस कांड का 198वां भाग सुनवाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिम्हन, आज दूसरी कड़ी। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, 7:30 पर हम है रही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के याद का दिन है। सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुनवाई जाएगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दिन में 11 बजे सुनिएगा विविधा। विविधा के अंतर्गत हासी नाटिका होगी सास बहू और हेलो फरमाइश, लेखक निर्देशक यूनुस खान। व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है, अभिनय नरोत्तम बीन। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी सुनाई जाएगी, 2:30 पर सुनिएगा सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत सुनिएगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक चंदन वृक्ष, उषा सक्सेना ने इसे लिखा है, निर्देशक रमा अरुण त्रिवेदी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का 5वां और आखिरी भाग सुनवाया जाएगा आज शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम होगा, कर्नाटक संगीत पद्धति के राग भाग 2, कलाकार शकुंतला नरसिम्हन। शाम 7 बजे सैनिकों की शौर्य गाथा, इस श्रृंखला में महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन निकी जाकू केंगुर से की शौर्य गाथा सुनवाई जाएगी। 7:45 पर साज और आवाज कार्यक्रम में सुरेश यादव की बजाई फिल्मी धुने सेक्सोफोन पर और फिर वही फिल्मी गाने। रात 8 बजे हवा महल में झलकी सुनिए मैरिज एनिवर्सरी, हरि नारायण शर्मा ने इसे लिखा, HS व्यास का निर्देशन। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम होगा, 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित होगा आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे विविधा सुनिएगा, हास्य नाटिका सास बहू और हेलो फरमाइश। और इसके अलावा विविधा के अंतर्गत व्यंग्य नाटक ये उन दिनों की बात है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली।

आपको बता दें सुबह 9:30 और रात 9:30 पर मजरूह सुल्तानपुरी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। आज है मजरूह की याद का दिन।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा नियमित प्रोग्राम वंदनवार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आइए सुनते हैं हमारे केंद्र के आज के और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र के आज के यानी कि सबसे पहले रविवार को प्रसारित होने वाले हमारे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचारों को। उसके बाद 7:00 राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 7:00 अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आज सुबह 7:10 पर सुनिए हमारे केंद्र की नियमित प्रस्तुति लोक रंग। 7:40 का समय रहेगा सुप्रभात का। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद 8:30 से विविध भारती के प्रसारण जारी रहेंगे। आज सुबह 9:00 आप सुनेंगे भारत की गूंज। 9:30 पर आज के फनकार। श्रोताओं, क्योंकि आज है रविवार, रविवार वाले दिन हम आपके लेकर आते हैं नारियों पर आधारित, महिलाओं की समस्याओं को केंद्रित हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम नारी मंच, जो कि आप सुन पाएंगे आज सुबह 10:00। 10:30 पर आप सुनेंगे बच्चों पर आधारित हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम बाल सभा। 11:00 का समय रहेगा रंग तरंग का। 12:00 पल पल दिल के पास। 1:05 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। आज दोपहर 2:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचारों को। 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के बाद 2:30 पर गीत गुंजन। 3:00 न्यू इंडिया समाचारों के बाद 3:10 से विविध भारती के प्रसारण शाम के 5:00 तक जारी रहेंगे।

श्रोताओं, आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे हेलो हिसार को। 6 बजे हिंदी में समाचारों के बाद 6:10 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 6:20 का समय रहेगा हमारे केंद्र की नियमित प्रस्तुति भक्ति संगीत का। 6:30 पर घर आंगन, 7 बजे मारी पसंद, 8 बजे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के बाद 9 बजे अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आज रात 9:15 से द्विविद भारती के प्रसारण जारी रहेंगे 10 बजे तक, और रात 10 बजे ईमेल पर आधारित हमारा स्पेशल प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। आज रात 11:10 पर हमारे सभा की समाप्ति होगी, संपन्न होगी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के यानी कि रविवार को प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र के मुख्य आकर्षण संबंधी जानकारी। अब हम आपको बताएंगे कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र के मुख्य आकर्षण।

श्रोताओ आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र के कल के यानी कि सोमवार को प्रसारित होने वाले मुख्य आकर्षण संबंधी जानकारी। कल हमारे केंद्र की प्रथम प्रसारण सभा का आगाज होगा 5:53 पर, 6 बजे वंदन बार के बाद 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचारों को, 7 बजे हिंदी में राष्ट्रीय समाचारों के बाद 7:05 पर अंग्रेजी समाचार कल ठीक इसी वक्त प्रसारित होंगे। कल 7:10 पर आप सुनेंगे लोकरंग, 7:40 पर सुप्रभात, 8 बजे समाचार प्रभारत के बाद 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं कल 8:30 से लेकर सुबह के 10 बजे तक विविध भारती के प्रसारण जारी रहेंगे। 9:30 पर कल आप सुन पाएंगे आज के फनकार। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय रहेगा नमस्ते हिसार का। कल 11 बजे आप सुन पाएंगे रंग तरंग। 12 बजे यादों की महफिल, 1:05 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद 1:10 पर विविध भारती की गीतमाला आप सुन पाएंगे 2 बजे तक। कल दोपहर 2 बजे अंग्रेजी में समाचारों के बाद 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचारों के बाद 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे से लेकर शाम 3:10 तक विविध भारती के प्रसारण जारी रहेंगे और उसके बाद 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार।

हम अपने श्रोताओं को यह स्मरण करा दें कि हम आपको कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले हमारे केंद्र के मुख्य आकर्षण संबंधी जानकारी साझा कर रहे हैं। हमारे केंद्र की सायंकालीन सभा कल शाम को 5 बजे शुरू होगी। 6 बजे हिंदी समाचारों के बाद 6:10 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 6:20 पर सुनिए हमारे केंद्र की नियमित प्रस्तुति भक्ति संगीत। श्रोताओं, कल सोमवार को 6:30 पर शाम को हम सुन पाएंगे प्रोग्राम युवा उमंग। 7 बजे का समय रहेगा खेती किसान सेती का और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मारे गांव। श्रोताओं, कल सोमवार को 8 बजे आप सुन पाएंगे गजलों पर आधारित हमारा स्पेशल प्रोग्राम महफिल। 8:45 पे राष्ट्रीय हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 9 बजे अंग्रेजी में समाचारों के बाद 9:15 पर विविध भारती के प्रसारण आप सुन पाएंगे रात 10 बजे तक। और कल सोमवार यानी कि 25 मई 2026 को कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम हेलो हिसार का रिपीटेड टेलीकास्ट 11 बजे तक। और 11:10 पर हमारे केंद्र की कल की सभा संपन्न होगी। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र के आज के और कल के मुख्य आकर्षण संबंधी जानकारी।

श्रोताओं ने अभी हमारे केंद्र के आज के और कल प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जाना। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचारों को। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेशमंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवस पर्यन्तं भविष्यति।

0: इति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुम्बई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद

लोग बाग आपस में बैठ के सुख दुख ने साझा कर रहे हैं। गीत संगीत ते आदमी का मनोरंजन हो जा। टाइम के बदलाव के साथ गीत संगीत में भी फर्क आया है। पहले सांगी बजनी का माया करते, पक्के साज की रागनी और बानगी हुआ करती। बीच में बदलाव आया, हरियाणवी फिल्मों ने भी अपना जलवा दिखाया। 1970 में हरियाणवी फिल्में बननी शुरू हुई, 10-1 साल मंदा रहा, लेकिन 1982-83 में बहुरानी, 1984 में चंद्रावल फिल्म के बाद तो हरियाणवी फिल्मा का दर्रा टूटा। 1985 में बनी फिल्म छेल गेला जांगी ने हरियाणवी गीत संगीत में खास पहचान दिलाई।

आज के इस कार्यक्रम में आपने फिल्म छेल गेला जांगी का गीत संगीत सुनवाऊंगी। अरविंद स्वामी द्वारा निर्देशित वेदपाल का संगीत बाल सिंह, शिखा पंडित और लहरी सिंह ने फिल्म छेल गेला जांगी में अहम भूमिका निभाई।

चंद्रावल फिल्म की कामयाबी पाछे तो हरियाणवी फिल्म की लहर सी चाल पड़ी। 1980-90 के दशक की बात करें, आकाशवाणी रोहतक पे 9:05 पे सवेरे एक गीत हरियाणवी फिल्म ताया करता तो लोग इसकी कसूती बाट देखा करते।

हरियाणवी फिल्म दीरा शेरा धरती बहु रानी चंद किरण चंद्रा और मारा पीर सासरा छेल गला जांगी लाडो बसंती मारी धरती मारी माँ छोरा हरियाणा का बैरी फूल बदन चांद चकोरी चंद्रो लीलो चमन गुलाबो मुकलावा चंद्रावल बाद दो माटी करे पुकार कुंबा पगड़ी सतरंगी और दादा लक्ष्मी चंद के गीता ने अपनी खास पहचान बनाई।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। सुबह के 7:40 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पीयूष। कार्यक्रम सुप्रभात की शुरुआत करेंगे आज के पाचांक से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पाचांक की शुरुआत करते हैं। आज का दिन है रविवार का। आज का जो प्रातःकाल, जो संध्या का समय है, वो है सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:40 तक। जो अमृतकाल है वो सुबह 8:16 से लेकर सुबह 9:54 तक रहेगा। सुबह का जो मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 4:16 से लेकर 4:58 तक चलेगा। प्रातःकाल जो संध्या का समय है, 4:30 से लेकर 5:30 तक होगा। आज शाम की जो संध्या का समय है, वह शाम 7:19 से लेकर 8:21 तक रहेगा। श्रोताओं, पूरे दिन में कुछ ऐसे समय भी आते हैं जिसमें हमें प्रभु की वंदना करनी होती है, स्तुति करनी होती है, और कोई भी शुभ कार्य करने से बचना होता है, तो हम उसके बारे में भी विवरण आपको दे देते हैं। आज राहु काल का समय शाम 5:37 से लेकर 7:19 तक होगा। जो दुर्मुहूर्त है वो 5:30 से लेकर 6:25 तक रहेगा। यानी कि इस समय के दौरान आपको किसी भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्र राशि सिंह है और सूर्य राशि वृषभ है। सूर्य नक्षत्र कृतिका है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का पाचांक।

श्रोताओ, आइए अब हम सुनते हैं श्री रामचरित मानस की 121वें पृष्ठ की व्याख्या। आज की व्याख्या सुनने से पहले मैं आपको, अब तक आपने जो हमारे श्रोताओं ने श्री रामचरित मानस के जिस अध्याय के बारे में सुना उससे थोड़ा अवगत करा देता हूं। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले मुनिराज नारद जी के मन में कामदेव के प्रभाव के कारण मन में अपना घर बसाने की और ब्याहने की इच्छा जन्म लेती है और नारद जी अपने आराध्य भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे अपने मन की इस दुविधा के बारे में बातचीत करते हैं और आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो घर बसाने की या ब्याह करने की जो इच्छा जन्म ली है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है तो अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाएं ताकि मैं भी गृहस्थ लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रभु ने श्री नारद जी की बात सुनी और उनको ये कहा कि हे नारद, तुमने मुझसे जो अपनी इच्छा व्यक्त की है और जिस प्रयोजन से तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं उस प्रयोजन को सार्थक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं वही करूंगा जो कि विधि के विधान है और जो आपके और पूरे जग के हित में है। प्रभु के इस प्रकार की मधुर वाणी सुनकर श्री नारद जी हर्षित हो गए और मन ही मन कई प्रकार के हर्षित विचारों में अपने आप में डूब गए। तो श्रोताओं, ये थी अभी तक की श्री रामचरितमानस की व्याख्या। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान ने श्री नारद जी की इच्छा को किस प्रकार सार्थक किया और श्री नारद जी जब एक स्वयंवर में गए तो उसके आगे का हाल हम आपको इस व्याख्या के दौरान सुना रहे हैं। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हर्षित रूप अति मोरे, मोहित जी आ नहीं बरही न बोहे। श्रोताओं, श्री नारद जी ने अपने आराध्य से एक बहुत ही सुंदर रूप की इच्छा की और उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ समय के लिए अपने जैसा ही एक रूप, सुंदर रूपवान बना दें ताकि मैं जब कभी भी किसी स्वयंवर में जाऊं तो वहां की जो रानी है वो मुझ मेरे सिवा और किसी के गले में वरमाला ना डाले। तो इस प्रकार की इच्छा जब उन्होंने अपने आराध्य से की तो भगवान विष्णु ने उनकी उनको ये कहा तथास्तु और उसके बाद नारद जी को यह ऐसा लगा कि उन का जो शरीर है वो भगवान विष्णु भांति सुंदर और कोमल और सुसज्जित करने वाला बन गया है और अपने इसी रूप को लेकर वो एक नगरी में जाते हैं। वो नगरी भी भगवान विष्णु द्वारा माया से बनाई हुई नगरी होती है। उस नगरी के अंदर एक स्वयंवर चल रहा होता है और वहां पे श्री नारद जी अपने इस नए रूप के साथ, जो कि उनको लगता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें एक नया रूप दिया है, बहुत ही सुंदर उज्जवल शरीर से नवाजा है, उस रूप को लेकर और बड़े गर्व से वो राजाओं के बीच में बैठ जाते हैं। राजा लोग खूब सज धज कर समाज हित अपने अपने आसन पर बैठे हैं।
मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे जैसा सुंदर रूप किसी का नहीं है और मुझे छोड़कर कन्या किसी और को नहीं वरेगी, यानी कि किसी और से वो शादी नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए कुछ ऐसा उन्हें कुरूप बना दिया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया, यानी कि जब श्री नारद जी उन राजाओं के बीच में बैठे तो सभी राजाओं ने उन्हें श्री नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। उन राजसभा के अंदर दो शिवजी के गण भी बैठे थे, वो दोनों इस भेद को जानते थे और ब्रह्मा जी का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे और बड़े ही मौज मस्ती से इस सारे के सारे मंजर का आनंद ले रहे थे। श्री नारद जी के हृदय में अपने खूबसूरत रूप का अभिमान इस कदर सर चढ़कर बैठा था कि वे अपने सिवा और किसी को देख ही नहीं रहे थे। भगवान शिव शंकर के दो गण भी वहां जाकर बैठ गए और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना समझ सका। भगवान शिव शंकर के जो गण थे वो नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग कर रहे थे, भगवान ने आपको बहुत ही अच्छी सुंदरता प्रदान की है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो रिझ ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर आपको ही वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे परंतु बुद्धि भ्रमित होने के कारण वह उनकी बातों को समझ नहीं सकते थे। इस विशेष चरित्र को किसी और ने नहीं जाना था। राजकन्या ने जब श्री नारद जी का बंदर जैसा मुंह देखा और भयंकर शरीर देखते ही उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुआरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिर ही महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चलती है जैसे कोई राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लेकर राजाओं की तरफ घूमने लगी। जिस ओर नारद जी बैठे हैं और अपने और फूल नहीं समा रहे हैं उस ओर तो उस राजकन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते रहते हैं और उसकी दशा देखकर भगवान शिव शंकर के जो गण हैं वो मुस्कुराते रहते हैं और आनंद लेते हैं। कृपालु भगवान की शरीर धारण करकर वहां पहुंच जाते हैं, यानी कि भगवान विष्णु भी एक राजा का शरीर धारण करकर वहां बैठते हैं और राजकुमारी ने हर्षित होकर भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर उनके गले में वह जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को वहां ले गए और सारी राजमंडली वहां से निराश होकर चली गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राजकुमारी को जाति देख बहुत ही विकल हो गए थे, मानो गांठ से छूटकर कोई मणि जमीन पर गिर गई हो। तब शिव शंकर के गणों ने मुस्कुराकर नारद जी के पास आए और कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर चले गए। मुनि ने जल में जब अपने रूप को देखा तो वो भयभीत हो गए। अपना रूप देखकर उन्हें इतना क्रोध हुआ, उन्होंने शिवजी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निसाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हमहु सो लेहु फर बरहु हसेहु मुनि को, कि जाओ तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस बन जाओ, तुमने हमारी हंसी की है उसका फल चखो और आगे से

फिर कभी तुम किसी मुनि की हंसी नहीं कर पाओगे। मुनि ने फिर जल में देखा और उन्होंने अपने असली रूप को प्राप्त हो गए। तब उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे और मन में क्रोध भरने लगा। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए। उनके मन में कई प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, जाकर या तो अपने आराध्य को श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करवाई है। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि बीच में ही रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी भी थी और वह राजकुमारी भी थी जिसने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे नारद मुनि, व्याकुल होकर किस जगह जा रहे हो? ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया और माया के वशभूत होकर उनके मन में कोई भी संकोच न रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, दूसरों की खुशी नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत बड़ा है। भगवान शिव शंकर ने के साथ ने तुमको बावला बना दिया है और देवताओं को प्रेरित करके उनका विषपान कराया है। असुर सुरा विष संकरी अपुरमा मनी चारु स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव भगवान को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि रख ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का विचार रखते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम्हारा कोई है नहीं। तुम जिसको मानते हो स्वच्छंदता से वही काम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कहते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं जानते हो। सबको ठग कर तुम अत्यंत निडर हो गए हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देता। अब तक तुमने कई लोगों को ठगा है, लेकिन आज आपने मुझसे छल कर मेरा दिल दुखाया है। अतः जिस प्रकार के वैराग्य के वेश में आपने मुझे इस स्वयंवर में भेजा है और मुझे ठगा है, मैं श्राप देता हूं कि वही वैराग्य का शरीर तुम भी धारण करो। तुमने हमारा बंदर रूप जैसा बना दिया है, इससे बंदर की भांति तुम भी व्याकुल होगे और उन्हीं की सहायता से तुम्हें तुम्हारा कार्य सार्थक होगा। तुमने मेरा बड़ा ही अहित किया है। जिस प्रकार मुझे एक स्त्री के वियोग में अत्यंत दुख हुआ, तुम भी स्त्री के वियोग में अति दुख पाओगे। इस श्राप को सिर पर रखकर भगवान हर्षित होकर बोले और उन्होंने नारद जी से विनती की कि हे कृपा निधान, यह सब मेरी ही बनाई गई माया की प्रबलता के कारण हुआ है। तब भगवान ने अपनी माया को नष्ट कर दिया और ना वहां लक्ष्मी रही और ना ही वो राजकुमारी जिन्होंने भगवान के रूप भगवान को गले में वरमाला डाली थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे शरणागत, हे दुखों के हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्य हो जाए। सभी लोगों पर दया करने वाले हे भगवान, मेरी इच्छा ऐसी ही हो। मुनि ने कहा, आपने मेरे अनेक खोटे वचन सुने हैं, मेरे पाप अब किस प्रकार मिटेंगे? तो श्रोताओं, अभी आपने श्री रामचरितमानस के 121, 22 और 23 अध्याय के व्याख्या सुनी, जिसमें श्री नारद जी अपने आप को सुंदर और रूपमान मानकर एक स्वयंवर में जाते हैं जो कि माया द्वारा रचित होता है, और वहां पर जो राजकुमारी होती है वो भगवान विष्णु को के गले में वरमाला डाल देती है। यह जानकर श्री नारद जी को काफी दुख होता है और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहा कि भाई, आपने मेरे साथ छल किया, मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा था लेकिन आपने मुझे कुरूप

बना दिया। तो जिस प्रकार मुझे दुख हुआ है, इसी प्रकार का दुख आपको भी प्राप्त हो। तो श्रोताओं, ये थी श्री रामचरित मानस की पृष्ठ 121, 22 और 23 की व्याख्या।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही

0: प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल।

0: पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि

0: गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100 meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy.

आइए सुनिए चित्रलोक। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। एक ऐसे गीतकार जिन्होंने फिल्म उद्योग में एक लंबी पारी खेली। युग बदलते रहे लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी गीतकारी की दुनिया के एक रोशन सितारे बने रहे।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज

भारती से आप चित्रलोक सुन रहे हैं। आज जाने माने संगीतकार राजेश रोशन का भी जन्मदिन है और हम उन्हें दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां।

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें? राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: अतुलहित चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरूह ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण, और जो प्रोग्राम आपने अभी सुना उसका नाम था आज के फनकार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है हमारी अगली पेशकश का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम नारी मंच रश्मि के साथ।
4: नारी मंच

कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं, जहां बातें मन की, एहसास दिल से होते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, दिल जानता है साथ आपका है। आप दूर होकर भी पास हैं, क्योंकि रिश्ता आपसे बहुत खास है। ऐसे रिश्ते मिलते नहीं, बस एक बार मिल जाएं तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। क्योंकि यहां कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, फिर भी साथ अटूट होता है। बहनों, ऐसा ही साथ है आपका और हमारा। कार्यक्रम नारी मंच में अपनी रेडियो सखी रश्मि का स्वीकार कीजिए। नमस्कार। अगर वर्तमान समय में आसपास नजर दौड़ाएं तो जितने हमारे बच्चे खासे उत्साहित हैं, उनकी गर्मी की छुट्टियों का आगाज हो चुका है, वहीं हमारी बहनें लगी हैं तैयारी कि कहां कहां घूमने जाना है, किस किस रिश्ते को फिर से जाकर सींचना है, बाबुल के घर जाना है, भाई के घर जाना है, या फिर ननद रानी आने वाली है। बच्चे करेंगे ढेर सी धमा चौकड़ी अपने होमवर्क के साथ। मतलब गर्मी की छुट्टियां मानो एक त्योहार सा बनकर आती हैं, जहां पर खासे उत्साहित होते हैं, कुछ नया सीखना होता है, कुछ नया देखना होता है। और इन्हीं के साथ अगर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में नजर दौड़ाएंगे तो आप मानेंगे, आप पाएंगे कि चाहे तेल की बढ़ती कीमतें हों या हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई ये गुजारिश कि ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाना है, सोने से मुंह को थोड़े देर के लिए, कुछ वक्त के लिए कम भी करना है। जानते हैं ना, हार्मोन स्ट्रेट बंद है, वैश्विक सप्लाई ठप हो चुकी है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सलाह महज संयम की अस्थाई अपील नहीं है। ये संकेत है कि ऊर्जा सुरक्षा हम भारतीयों की, आपकी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को गहरे तौर पर प्रभावित कर रही है। जब हमें ये कहा जाए कि सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ईंधन की खपत कम करना है, रेल से माल ढुलाई हो, अनावश्यक विदेशी यात्राएं हो, इन्हें सीमित करना है, तो संदेश बहनों हमें साफ तौर पर समझ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव, जो युद्ध की स्थितियां हुई हैं, इसका असर आपकी और हमारी जिंदगी पर भी गहरे तौर से दिखाई देता है। बहनों, हमारे देश में हम अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल और लगभग 50% गैस आयात करते हैं। मौजूदा संकट से पहले भी हमारा जीवाश्म आयात बिल लगभग 180 अरब डॉलर का हो चुका है। मतलब समझ आता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है उसके देखते हुए ही हमें अपनी जिंदगी की रोजमर्रा के तौर तरीकों में बदलाव नहीं करना है, बल्कि लंबे समय तक अपने देश को अगर विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। हमारा लक्ष्य यह है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उन स्रोतों का विकास किया जाए और उनका प्रयोग को भी बढ़ावा

0: अब किया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा के लिहाज से हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से नेटवर्क का विस्तार करना होगा और ये युद्ध स्तर पर होना चाहिए। ऊर्जा के मामले में हमारी अगली छलांग केवल क्षमता बढ़ाने से तय नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे तंत्र का निर्माण करना होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा को भरोसेमंद, सस्ता और सुरक्षित बनाता हो, और यही सिखाया है हमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संकट ने। पर ऊर्जा संकट के बीच देश के बड़े बड़े नेता अपनी बड़ी कारों के काफिले को छोड़कर उन्हें छोटा कर रहे हैं। कुछ साइकिल पर जा रहे हैं, कुछ सार्वजनिक परिवहन साधन का भी प्रयोग करते नजर आए। अगर याद करें 1970 के दशक के दौरान तो भी ऐसा ही एक दौर आया था जब तेल संकट के बीच संसार के कई देशों में परिवहन व्यवस्था में बदलाव आया था। तब नीदरलैंड, डेनमार्क और यूरोप के कई देशों में साइकिल लेन का विस्तार किया गया और साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन को भी प्राथमिकता दी गई। ठीक ऐसे ही अब हमारे देश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यानी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, मेट्रो और बसों का उपयोग करने और फिर से साइकिल से रिश्ता जोड़ने का आग्रह किया है। लेकिन बहनों, ध्यान रखना है, ये बदलाव सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए, ये भविष्य में इस देश का परिवहन व्यवहार भी बनना चाहिए। मतलब ये कि जो गाड़ियों के काफिले धूल उड़ाते भागते नजर आते हैं, उनकी गति मंद जो नजर आती है वो हमेशा के लिए होनी चाहिए। हमें ये मानना होगा कि चाहे विदेश यात्राओं से मोह कम करना हो, ऊर्जा संरक्षण के तौर तरीकों में बदलाव लाना हो, और साथ ही साथ जो हमारा सबसे कीमती जिसे हम मानते हैं वो होते हैं हमारे आभूषण, फिर चाहे वो सोने के हो, चांदी के हो, विवाह पे मिले हो, कहीं उपहार से मिले हो, या हमारी वो छोटी छोटी बचत जो कभी रसोई के किसी मर्तबान में छुपी होती है, अलमारी के कागज के नीचे तह लगाकर रखी जाती है, उस बचत को जब हम करते हैं तो मन में होता है कि कुछ सोने का या चांदी का नया जेवर खरीदेंगे। तो इस मोह को भी त्यागना होगा और यही सब बातें हमसे कर रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर राजेश कुमार जी, जो संबंध रखते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से एक है, और इसका जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में पांचवें छठे नंबर पे इसका जो नंबर आता है। और अब विशेष तौर पर जब से ये इजराइल, यूएस और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, वार बढ़ा है, उसके बाद से जो है हमारे विशेष तौर पर जो विदेशी विनिमय है इस पर एक प्रकार से मैं कहूँगा कि प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर बढ़ने का मतलब ये है कि रुपया धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और जैसा कि जो सरकार ने भी कुछ नागरिकों से अपेक्षा की है, कुछ सुझाव दिए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि कुछ नागरिक भी अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। विशेष तौर पर मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा, और जो विशेष तौर पर जिसमें हमारी बहनें महिलाओं का विशेष योगदान वो दे सकती हैं, एक तो गोल्ड परचेज को लेकर जो बात कही गई है, और दूसरा जो इसमें एनर्जी में अपना योगदान जो दे सकती हैं। गोल्ड परचेज की जहां तक बात है कि जो सोना है, कि ये नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदिए और आपको बिल्कुल कभी सोना नहीं खरीदना है, तो इसमें कहा कि जैसा कि भाई कम से कम आप एक साल तक जो गैर जरूरी खरीदारी है वो आप कम कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो रुपया मजबूत होगा, क्योंकि मैं एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहूँगा, अगर डॉलर के मुकाबले एक रुपया कमज़ोर होता है, रुपया अगर एक रुपये से कमज़ोर होता है तो एक तोला यानी कि 10 ग्राम में 1500 रुपये का फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमारी बहनों का विशेष इसमें योगदान रहता है ज्वेलरी वगैरह खरीदने में, तो वो अगर इसमें योगदान दें कि थोड़ा सा इस जो गैर जरूरी है, जैसे अपने पास अगर निवेश भी करना है

वो सोने में निवेश करने की बजाय दूसरे जो रियल इस्टेट और अपना जो लैंड और दूसरे जो ऐसे एसेट जिसे अपने ऐसे जगह पैसा लगाए कि जहाँ से कुछ रिटर्न भी मिले जो है, तो 1 साल तक जो गैर जरूरी खरीदारी है उसको अवॉइड आप कर सकते हैं, उस वो ना खरीदें। और दूसरा, महिलाओं का जो ऊर्जा बचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि घर पर जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कुकिंग है, कूलिंग है, आपकी जो हीटिंग है, जो भी आपकी नीड है, वो बहनों पर बड़ी जिम्मेवारी होती है घर को चलाने में, मैनेज करने में। तो वो अगर चाहें तो एनर्जी को बचा सकते हैं, एनर्जी की ज़रूरतों को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो लगभग हम जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनका 2/3, मतलब ये 3/4 के आसपास जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और इसलिए इस पे प्रेशर बढ़ता है। तो आप से जो रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी ने की है, तो वो बहुत ही अजीब है कि आप देश हित में ऊर्जा भी बचा सकते हैं, आप जो सोने की गैर जरूरी जो जो ऐसी ज़रूरत जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, अभी के लिए स्थगित कर सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं। और दूसरी, जो एनर्जी बचाने अगर आप बचाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो डॉलर के लिए डिमांड है, पिछले अगर हम 1 साल का इसमें ट्रेंड देखते हैं तो लगभग इसमें 10 रुपये जो है से रुपया कमज़ोर हुआ, मैं ये कहूँगा कि जो जहाँ पर जहाँ वो 84-85 रुपये 1 साल पहले था लगभग ऑन एन एवरेज, अब वो बढ़कर जो है 95-96-95-96 रुपये हो गया है। तो अगर हम दो ये काम मजबूती से करेंगे कि एक जो सोने की गैर जरूरी जो खरीदारी है 1 साल के लिए कम से कम इसको स्थगित कर दें, सरकार ने ये नहीं कहा कि आपने बिल्कुल नहीं खरीदना है, आप 1 साल तक स्थगित कर दें इसको। और दूसरा जो है, आप एनर्जी बचाएं, जो दूसरे एनर्जी बचाने का कि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं कि आप जो है CNG और आपके जो दूसरे इसके स्थान पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है घर में हमारे जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो है, महिलाओं को अच्छी तरह से उनको ज्ञान होता है कि वो जो है गोबर के उपले और दूसरे जो चीज़ों का उपयोग करके बहुत सारी एनर्जी वो बचा सकते हैं। तो इससे देश हित में हमारी जो ज़रूरतें हैं हम उनको भी सुचारू रूप से पूरा कर पाएंगे और एनर्जी भी बचा पाएंगे। धन्यवाद।

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी हिसार, स्टिल आइकॉनिक, स्टिल कनेक्टिंग इंडिया।

0: ये आवाज है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। ये आवाज है भारत की आजादी की।
1: At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: ये आवाज है भारतीय संस्कृति की।

0: ये आवाज है भारत के अदम्य साहस की।
1: At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range।
0: ये आवाज है नए भारत की। 90 वर्षों से भारत की आत्मा की आवाज आकाशवाणी।
2: बहनों, अभी सुने हमने बातें प्रोफेसर राजेश कुमार जी की, जो कि अर्थशास्त्र विषय के विशेषज्ञ हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। और अब

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी महुआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बेचारी का मन। मन समझती है ना आप?

दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

बहनों देखिए ना, गर्मी की छुट्टियों का आगाज हो ही चुका है। बच्चे पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब ये छुट्टियां आएं। हमारी बहनें भी करती हैं कि कोई घूमने की जगह नहीं देखी जाए, देखा जाए देश और दुनिया को। लेकिन वर्तमान संकट के दौरान जब कहा गया है हमें कि हम विदेश यात्राएं अगर गैर जरूरी है तो ना करें, तो उस समय बहनों सोचना बहुत जरूरी बन पड़ता है कि विविधताओं से भरे हमारे देश और उसकी परंपराओं को देखने का मौका देती हैं ये छुट्टियां। दादी नानी की कहानियों के गलियारों में टहलते जिस भारत को देखने का मौका हमें मिला था, सुना था हमने, उसे याद करने का आज भी मन करता है। बचपन की वो कहानियां जो उस समय लगता था कि कभी पूरी होंगी या नहीं होंगी, फिर बड़े हुए, फिर किसी शहर किसी गांव में जा बसे तो लगता था कुछ छूट सा गया है। उस भारत को जानना देखना कहीं पीछे छूट गया, और इसीलिए जरूरी है कि जब आपके आसपास छुट्टियां आ जाएं, मन करे कहीं घूमना है, तो विदेश जाने की हसरत पालने से पहले जरूरी है कि हम अपने देश को जान लें, घूम ले। और बहुत जरूरी है कि विदेश जाने से, घूमने से पहले अपने देश को घूमकर देखा जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है हमारा भारत। हमारे देश में विविधताओं का एक अद्भुत खजाना है। यहाँ आपको हिमालय की गगनचुंबी बर्फीली चोटियां, शांत और चमचमाते समुद्र तट, थार के रेगिस्तान के टीले और दक्षिण के हरे भरे सदाबहार जंगल, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे देश में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए राजस्थान की शानदार महल ताजमहल, वाराणसी के प्राचीन घाट जो हैं, साथ ही साथ पहाड़ों की रानी लद्दाख और की रहस्यमयी वादियां भी, कश्मीर की डल झील, हिमाचल और उत्तराखंड के शांत पहाड़ी शहर आपको न्योता देते हैं। जब बात की जाए समुद्र तट और द्वीपों की, तो चाहे वो केरल के बैकवाटर हो, गोवा के रेतीले तट हो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का शांत और नीला पानी हो, या फिर मध्य प्रदेश और काजीरंगा असम के राष्ट्रीय उद्यान हो, जहां आप बाघ और एक सींग वाले गैंडे को करीब से देख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम एक ऐसे देश के बाशिंदे हैं जिस पर प्रकृति ने भर भर कर प्यार बरसाया है। हम अगर चाहें तो भारत के मौसम, वेशभूषा, हर जगह की विविधता को देख सकते हैं। और बात केवल घूमने की ही नहीं है, हमारे यहाँ खाने में भी उतनी ही वैरायटी है। जितनी विविधता हमारे देश के खाने में है, उतनी शायद ही किसी और देश में होगी। भारत एक थाली की तरह है जिसके हर राज्य का अपना एक अलग स्वाद है, और स्वाद भी ऐसा कि बस अगर एक बार चख लिया तो बार बार खाने का मन करेगा। चाहे मीठा हो, नमकीन हो, तीखा हो, चटपटा हो, असम की जूट बोलोकिया मिर्च यहाँ कदम कदम पर खाने का मिजाज बदल जाता है। मसालों पर हमारी निर्भरता रहती है जो हमारी सेहत को भी संभाले रहती है। तीज त्योहारों की बात की जाए तो जब आप भारत को घूमने निकलते हैं तो अलग अलग तरह के माहौल को, अलग अलग तरह के उत्सवों को देख पाने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए बहनों बहुत जरूरी है कि अपने देश को पहले घूमिए, उसके बाद विदेश यात्रा की बातें अपने जहन में लेके आइए। और इसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गुजारिश आपसे, हमसे, हमारी बहनों से की, वो ये कि सोना गैर जरूरी हो तो मत खरीदिए एक साल की। माना कि सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी सोने से मोह रखते हैं, तभी तो दिवाली आते ही सोने की मांग आसमान छूने लगती है। और माँ लक्ष्मी भी तो अपने एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे में सोने का बर्तन लेती हुई दिखाई देती हैं। मतलब ये कि सोने का मोह हम सभी को होता है, लेकिन चुनिंदा चीजों में अगर आप सोने की जगह निवेश करेंगे तो ये भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश होगा। मतलब कहने का ये है कि आप गोल्ड बॉन्ड ले सकती हैं, अपने पैसे को सोने की जगह किसी और सुरक्षित तरीके से भी निवेश कर सकती हैं। बात तो इतनी सी है कि आर्थिक संकट है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे आग्रह किया है हम उसे निभाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें ठीक नहीं लगता, इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है। तो बातों का सिलसिला यही चलता रहेगा।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: तो बहनों जरूरी है कि सोने का मोह कम से कम एक साल के लिए त्याग दीजिए, ऊर्जा संरक्षण के सारे तौर तरीकों को अपनाइए और विदेश से पहले अपना देश भी घूम ही डालिए। इसी के साथ देखिए ना कार्यक्रम नारी मंच में।

अब घड़ी ने इशारा किया है, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। हम चाहेंगे आप अपने मन की बातें खतों के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी मंच, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। हमारा ईमेल एड्रेस है radiohisar@gmail.com। और अब दीजिए अपनी रेडियो सखी रश्मि को इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी मंच रश्मि के साथ। FM बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:31 हुए हैं। वक्त हो चला है हमारी अगली पेशकश का। आज रविवार वाले दिन हम लेकर आते हैं आपके बच्चों पर आधारित एक स्पेशल प्रोग्राम बाल सभा। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है बाल सभा।
1: और आज पहुंच चुके हैं हमारे नन्हे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ। तो करते हैं स्वागत हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। बाल सभा का ये जो सफर है, इसमें आज हमारे साथ शामिल होने आए हैं सिमरन, लक्ष्य, सौरभ, निकिता, निशांत, भव्य, लक्ष्या, महक, विवेक, नितिश और कृतिका। कुछ कहानियां हैं, कुछ कविताएं हैं और कुछ के पास देने को ज्ञान भरी बातें भी हैं जो हमसे साझा करेंगे। तो लीजिए बच्चों, आज के बाल सभा के सफर का आगाज करते हैं सिमरन के साथ। सिमरन कक्षा 10वीं से हैं और बता रही हैं कि किस प्रकार हमारा देश बदलता बदलता और बदलता जा रहा है। आइए सुनते हैं सिमरन को।
2: नमस्कार, मैं सिमरन कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने आई हूँ जो किसी किताब में नहीं बल्कि हम सबकी रगों में दौड़ रही है। हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया है, पर क्या आपने कभी सोचा है आपने देश के लिए क्या किया है? अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। डॉक्टर कलाम के ये शब्द सिर्फ एक सुविचार नहीं है, ये आज के भारत का DNA है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रेडियो पर सुनाई देने वाली ये आवाजें, ये बातें, ये खबरें आखिर क्या बयां करती है? ये बयां करती है कि अब भारत बदल नहीं रहा, भारत बदल चुका है। वो दौर गया जब हम दुनिया की तरफ उम्मीद से देखते थे, आज दुनिया हमारी तरफ उम्मीद से देखती है। जब हमारे वैज्ञानिक चांद के अंधेरे हिस्से साउथ पोल को रोशन करते हैं तो सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं पहुंचती, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान पहुंचता है। आज एक रेडी पटरी वाला जब फोन के एक क्लिक में पेमेंट लेता है तो वह डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा सबूत है। क्या देश का ये अमृतकाल सिर्फ बड़े बड़े भाषणों के लिए है? जी नहीं, देश सिर्फ सरहदों पर खड़े जवानों से सुरक्षित है, लेकिन समृद्ध और महान बनेगा मुझसे और आपसे। जब आप सड़क से कचरा उठाते हैं तो वह देशभक्ति है। जब हम अपनी पढ़ाई को केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं बल्कि देश की समस्या सुलझाने का हथियार बनाते हैं तब हम असली देशभक्ति करते हैं, असली भारत भाग्य विधाता बनते हैं। और दोस्तों, भाग्य विधाता बनने का मतलब ऊंचे पद पर बैठना नहीं है, इसका मतलब है उस दिन का इंतजार करना जब दुनिया का कोई भी देश तरक्की की परिभाषा लिखे तो वो उदाहरण दे भारत का। जाते जाते बस यही कहूंगी, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद, जय भारत।
1: क्या बात है, तो बच्चों बजा दीजिए सिमरन के लिए जोरदार ताली। सिमरन ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपको अपनी देशभक्ति दिखाने का शौक है, अगर आपको लगता है कि आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो जरूरी नहीं कि हम बंदूक उठाकर हथियार लेकर सैनिकों की तरह सीमा पर खुद को तैनात

0: कर लें। अगर हम ऊर्जा की बचत करते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि कहीं पर पानी या बिजली है उसकी बर्बादी हो रही है, आप ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, आप प्लास्टिक से धरती की सेहत को खराब नहीं करते हैं, आप एक पौधा हर बार अपने जन्मदिन पर लगाते हैं, और सिर्फ लगाते ही नहीं है, उस पौधे को संभालते हैं, उस पौधे को इतना संभालते हैं कि एक नन्हा पौधा एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाए, तो यकीन मानिए आप अपने भारतीय होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। सिमरन ने बखूबी बताया कि हम क्या कर सकते हैं इस बदलते हुए भारत में और सकारात्मकता लाने के लिए, विकास के राह पर इसकी गति तेज करने के लिए क्या हमारा योगदान हो सकता है। और अब बालसभा में सुनेंगे लक्ष्य के मन की बात कि कैसा है आज का युग।
1: मेरा नाम लक्ष्य है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आज का युग, जान दिखावा ज़्यादा सच्चाई कम। आज के समय में लोग असली से नकली इमेज बनाते हैं। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। लोग इस मोबाइल की दुनिया में इतना खो गए हैं कि उन्हें यह तक नहीं पता कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। असली हिम्मत यही है कि इस दिखावे के युग में भी सच्चे बने रहे। सोशल मीडिया में से बाहर निकल कर हमें हमारे परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। आज के युग में सबसे अलग वही है जो दिखावे में नहीं सच्चाई में जीता है। धन्यवाद।
0: क्या बात है, तो बच्चों बजा दीजिए लक्ष्य के लिए तालियां। लक्ष्य ने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल ने हमारी जिंदगी के सारे तौर तरीकों में खासा बदलाव किया है। अब कहीं पर भी आप देखें तो घरों में सुबह नींद खोलने के लिए अलार्म का इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी फोटो स्टूडियो नहीं जाता फोटो खिंचवाने के लिए, और यहाँ तक कि समय देखने के लिए भी बंधने वाली हाथ की घड़ी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। मतलब कि हमारे हाथ में जो मोबाइल नाम का उपकरण है, इसने ना केवल बहुत सी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से हटा दिया है, बल्कि सच कहें तो इसने बहुत से रिश्तों की जगह भी ले ली है। आप बच्चों की ही बात करें तो अगर आपसे आपका मोबाइल, जिसका भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपके माता पिता परिवार का कोई भी मोबाइल जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको उसे देखने की छूने की मनाही हो जाए, तो बस आपको लगता है कि इससे बुरा तो लोग हमारे साथ कर ही नहीं सकते। पढ़ाई में नंबर जब कम आते हैं, तो अगर आप इस बात का अवलोकन करें कि क्या कारण रहा, तो खुद ही खुद को बताते हैं कि अगर मोबाइल पे समय कम बताते तो शायद अच्छा बेहतर परीक्षा परिणाम मिल जाता। मतलब मानते हम सभी हैं कि रिश्तों की जगह भी मोबाइल ले रहा है, पढ़ाई में सफलता के पीछे रहने का कारण भी मोबाइल बन रहा है, लेकिन फिर भी हम इससे दूरी नहीं बना पा रहे। हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल से दूर हो जाए, कंप्यूटर लैपटॉप से दूरी बना के रखें, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि आप इसका सीमित उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें। याद रखें ये हमारी सुविधाओं के लिए है, इसे हमने बनाया है, हमें इसने नहीं बनाया। तो अब बालसभा में सुनेंगे सौरभ की बात, और सौरभ बता रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने स्वास्थ्य को संभाल सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा की मदद से। आइए सुनते हैं, सौरभ को कक्षा 10वीं से हैं।
2: मैं सौरभ आपके सामने आकाशवाणी के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे स्वास्थ्य के लिए तथा देश के लिए विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह इन दोनों में आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा हमें स्वस्थ रहने में तथा हमें बीमारियों से दूर रखने में हमारी मदद करती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अपना कार्य अच्छे से कर सकते हो और देश के विकास में भी सहयोग दे सकते हो। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग इस शिक्षा को केवल एक समय बर्बाद या टाइम पास कहते हैं। वास्तव में वह व्यक्ति मूर्ख है। जो इस शिक्षा की कदर करता है या इसका पालन करता है वही समझदार व्यक्ति है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल सही कहा सौरभ ने कि अगर आपका स्वास्थ्य सलामत है तो आप दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठा सकते हैं। तो बच्चे बजा दीजिए सौरभ के लिए तालियां। और सौरभ के बाद अब हम रुक करेंगे निकिता की ओर। निकिता सुना रही है कविता, कक्षा 10वीं से हैं, और कविता का शीर्षक है आत्मविश्वास।
3: नमस्कार, मैं निकिता कक्षा दसवीं से आज आपको आत्मविश्वास पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने भी शब्द है, एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है। ये पारावार छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे, हम वो किश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, परिस्थितियों से परे हमें स्वयं पर विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं

0: छोड़ देंगे, हम वो सह नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। धन्यवाद।
1: क्या बात है, तो निकिता के लिए बजा दीजिए तालियां। और निकिता के इस कविता के बाद बच्चों को सुनाते हैं एक गीत, एक बटा दो, दो बटे चार। ये गीत लिया है हमने फिल्म कालीचरण से। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इस गिफ्ट के बाद में अपनी बाल सभा के सिलसिले को फिर से हम आरंभ कर रहे हैं और अब आप पहुंचे हैं निशांत। निशांत बताएंगे कि किस प्रकार आप खुद पे विश्वास बनाए रख सकते हैं, यानी अपना आत्मविश्वास बनाकर दुनिया की तमाम बाधाओं से पार पा सकते हैं। आइए सुनते हैं निशांत को।
1: मैं निशांत, कक्षा 10वीं का छात्र, आज आपके समक्ष आत्मविश्वास के महत्व के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास करना। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जिस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, वही जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम कभी गलती ना करें, इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें कभी हारने नहीं देता। हम सकारात्मक सोच, नियमित अभ्यास और अपनी छोटी सफलताओं को

0: पहचान कर आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे मेहनत और अनुभव से विकसित किया जा सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।
1: तो बच्चों बजा दीजिए निशांत के लिए तालियां। और निशांत ने बिल्कुल सही कहा कि गलतियां तो हमसे होंगी ही सही। जब हम रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सी रुकावटें आएंगी, ऐसा लगेगा कि बस अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। गलतियां हो ही गई हैं तो उन गलतियों से कुछ सबक लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और हम और आप सब मुसाफिर हैं। किसी को कुछ दूरी तक चलना है, किसी को लंबा सफर तय करना है, और इस सफर में बहुत सी बाधाएं, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, ये सबको पता है, लेकिन उनसे सीखकर अपने सफर को जारी रखना ही होगा। यही सफलता का सीधा साधा सूत्र यानी फॉर्मूला है। और अब बाल सभा में हम सुनेंगे भव्य को। भव्य कक्षा 10वीं से हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके साथी यानी आप बच्चे मोबाइल का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं।
2: सभी को प्रणाम। मैं भव्य कक्षा 10वीं का छात्र आज आकाशवाणी के माध्यम से आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो है मोबाइल का सही इस्तेमाल। दोस्तों, आजकल मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज़ में मोबाइल हमारे काम आता है, लेकिन कई बार हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। घंटों तक गेम्स खेलना या बिना वजह रील्स देखना, इससे हमारा अधिकतर समय खराब होता है और पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि मोबाइल हमारे लिए एक टूल है, न कि समय बर्बादी का जरिया। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज से हम तय करें कि हम मोबाइल का इस्तेमाल समझदारी से करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।
1: बहुत छोटे और संक्षिप्त तरीके से भव्य ने बता दिया कि किस मोबाइल का सही इस्तेमाल करना जरूरी है और ध्यान में रखना होगा। बच्चों बजा दीजिए भव्य के लिए जोरदार तालियां। भव्य ने जो जिक्र किया कि मोबाइल का सही इस्तेमाल ज़रूरी है, तो बच्चों आपने गांधी जी के तीन बंदर वाली कहानी तो सुनी ही होगी। गांधी जी के तीन बंदर थे, उनमें से एक का काम था ये बताना कि बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था बुरा मत देखो, और तीसरा बंदर कहता था कि बुरा मत कहो। मतलब बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं देखना। अगर देखा जाए तो गांधी जी के ये तीन बंदर अगर मिला दिए जाएं तो बन जाएगा आपका हमारा मोबाइल। मतलब जब हम इसे हाथ में लेते हैं या जब इसके साथ होते हैं, तो ना तो हम किसी को देखना चाहते हैं, ना हम किसी से बोलना चाहते हैं, और ना ही हम किसी को सुनना चाहते हैं। तो इस मोबाइल नाम के उपकरण का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, ये हमें बताया भव्य ने। और अब हम रुक करते हैं लक्ष्या की ओर। लक्ष्या सुना रही है एक कविता जो समर्पित है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आइए सुनते हैं लक्ष्या को।
3: नमस्कार, मैं लक्ष्या एक कविता के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रकट करना चाहूँगी। लोगों को दिया समानता का अधिकार, बनाई जनता की सरकार, न्याय और जातिवाद से लिया लोहा, लोगों के मन को मोहा, महिलाओं और दलितों को दिए अधिकार, सबके सपनों को किया साकार, दलितों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष, हर चुनौती को किया स्वीकार, सहर्ष राष्ट्र निर्माण के लिए किया कार्य, हर चुनौती को किया स्वीकार, देश हित के लिए सहे हर अपमान, इसलिए आओ करें बाबा साहब का सम्मान, लोगों के लिए कार्य किया इन्होंने बार बार, जीवन था उनका संघर्षों से भरा, फिर भी अपने हर वादे को किया पूरा, देश हित में किया संविधान निर्माण, गरीबों निर्बलों के जीवन में डाले नए प्राण, उनके दिखाए रास्ते पर हमें चलना होगा, संविधान की बातों पर अमल करना होगा, नियम कानून द्वारा सबको सपनों का साकार, आओ मिलकर करें उनका सम्मान, उनके बातों को मानकर रखे उनका सम्मान, गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए बाबा साहब, शोषित हो या पिछड़े पूरे किए सबके ख्वाब, यही है कारण कि इतने महान थे हमारे बाबा साहब, दुनिया जो इतनी सुंदर है, सुंदरता पर सबका हक है, नई सोच वह धरती अंबर, जल सरोवर सबका हक है, आज़ादी की मांग नहीं अब, आज़ादी पर सबका हक है, भीम तुम्हारी एक पुस्तिका न

0: कहने कितनों का हक है। नहीं था जिनको हक कुछ कह दे, अब सब कहने का हक है, मंदिर मस्जिद गरीजा घर, पर आना जाना सबका हक है। मरना तो सबको एक दिन है, खुलकर जीना सबका हक है। भीम तुम्हारी एक पुस्तिका, न जाने कितनों का हक है। धन्यवाद।
1: तो बच्चों बजा दीजिए लक्ष्य के लिए तालियां। लक्ष्या ने कितनी खूबसूरती से बताया बाबा साहब के जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में, और किस तरह से संविधान जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषित और पिछड़े वर्ग के लिए जो काम उस दौर में किया, मतलब तब जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उस समय उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग की समस्याओं को समझा और उन्हें सम्मान भरी जिंदगी देने का संघर्ष शुरू किया। और लक्ष्य के बाद अब आ पहुंची है महक कक्षा 10वीं से और बता रही हैं कि कितने महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के पास मौजूद रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं महक कक्षा 10वीं की छात्रा आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना चाहती हूँ। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। इसके पीछे सदियों का संघर्ष और लाखों वीरों का बलिदान है। भगत सिंह की फांसी, राजगुरु सुखदेव का जज्बा, झांसी की रानी की वीरता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, इन्हीं कुर्बानियों की नींव पर हमारे स्वतंत्र भारत की इमारत खड़ी है। आज़ादी की असली कीमत उन माताओं के आंसुओं से पूछिए जिन्होंने अपने जवान बेटे खो दिए, उन वीरांगनाओं से पूछिए जिनके सुहाग देश पर न्यौछावर हो गए। इन्हीं पर किसी महान कवि ने कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन साथियों, आज एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, क्या हमारे शहीदों ने इसी भारत का सपना देखा था? आज देश के रग रग में फैला भ्रष्टाचार उन बलिदानों का अपमान कर रहा है। जब एक सरकारी दफ्तर में आम आदमी को अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, जब चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता होता है, या जब राजनीतिक प्रशासन में ईमानदारी दम तोड़ देती है, तो समझ जाइए कि हम अपनी आज़ादी को गिरवी रख रहे हैं। भ्रष्टाचार वह दीमक है जो हमारे लोकतंत्र के जड़ों को खोखला कर रही है। वीरों ने हमें अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ाद करा दिया, लेकिन आज वैचारिक गुलामी और भ्रष्टाचार से हमें खुद ही आज़ाद होना होगा। सच्ची देशभक्ति झंडा फहराने में नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाने में है। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े नहीं होते तो हम उन वीरों के बलिदान का अपमान कर रहे हैं। तो हम वचन लेते हैं कि हम न रिश्वत देंगे न लेंगे और स्वच्छ और पारदर्शी भारत के निर्माण में योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: क्या बात है महक। तो बच्चों बजा दीजिए महक के लिए तालियां। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में आगे आने की बात करते हैं तो हमें यकीन होता है कि वाकई एक दिन हमारा देश इस भ्रष्टाचार नाम की दीमक से मुक्ति पा ही लेगा। और अब देखिए ना, जब बात आज़ादी के नायकों की हो रही है तो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित एक कविता लेकर आ रहे हैं हमारे सामने विवेक। विवेक कक्षा 10वीं के छात्र हैं।
3: नमस्कार, मैं विवेक कक्षा 10वीं का छात्र आज आपको आकाशवाणी के माध्यम से देशभक्ति पर कुछ बताना चाहता हूँ। अरे जलती रही नारियाँ जोर में फिर भी भेड़िए मौन थे, अरे सड़ती रही लाशें सड़कों पर फिर भी गांधी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान फिर महाराणा प्रताप कौन थे, अरे आज भी दिल्ली के संग्रहालय में वह रस्सियाँ सजा कर रखी गई हैं जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे, अरे कहाँ है वो रस्सियाँ जिस पर राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव हंसते हंसते लटके थे, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजारों पर मुंह ढककर सोया न गया। धन्यवाद।
1: क्या बात है। तो बजा दीजिए बच्चों विवेक के लिए तालियां। बच्चों पहले एक जमाने में जब रेडियो का प्रचलन शुरू हुआ तो रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, वीसीडी, फिर उसके बाद में टेलीविज़न भी, पहले ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर टीवी, उसके बाद आपके घरों में टंगे हुए दीवार पर वो पतले वाले टीवी, मतलब तकनीक ने चाहे रेडियो की बात की जाए, टेलीविजन की बात की जाए या किसी भी उपकरण की बात की जाए, एक लंबा सफर तय किया होता है अपने वर्तमान स्वरूप को पाने के लिए। अब ऐसे ही अब दिनों दिन हम सुनते जा रहे हैं AI का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिंदगी सुविधाजनक होने लगी है, तमाम समस्याओं के हल चुटकी बजाते ही निकाल कर हमें परोस देता है AI। क्या है ये AI और इसका क्या महत्व है, यही सब बातें हमें बताने के लिए आ पहुंचे हैं नितिश। नितिश कक्षा दसवीं से हैं, आइए सुनते हैं नितिश को।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिश और आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI का मतलब है मशीनों की समझ। ये कोई जादू नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस का वो रूप है जहां मशीनें हमारी तरह सोचना और सीखना शुरू कर देती हैं। आज AI हमारे साथ हर पल है, चाहे वो मोबाइल पर वॉइस असिस्टेंट हो, खेत की मिट्टी की जांच करने वाली मशीनें या बीमारियों का पता लगाने वाले एडवांस्ड स्कैनर्स। AI ने मुश्किल कामों को आसान और तेज बना दिया है। तो चलिए इस नई तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और एक बेहतर भविष्य की शुरुआत करें। धन्यवाद।
1: क्या बात है, तो बजा दीजिए बच्चों नितिश के लिए तालियां। और नितिश के बाद आइए आपको सुनाते हैं, पूरा करने के लिए आ पहुंची है कृतिका। कृतिका से सुनते हैं कि किस प्रकार एक छात्र जो है वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं।
5: नमस्कार, मैं कृतिका कक्षा दसवीं की छात्रा आज आकाशवाणी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी भी देश का भविष्य उसके छात्रों पर निर्भर करता है। छात्र सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे ही नहीं होते बल्कि वे कल के जिम्मेदार नागरिक, लीडर्स और इनोवेटर्स होते हैं। आज हम जो सीखते हैं वही कल हमारे देश की दिशा तय करता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रोल है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि सही और गलत में फर्क समझने की शक्ति भी देती है। एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी ही देश के लिए सही निर्णय ले सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों को ईमानदारी और अनुशासन अपनाना चाहिए। अगर हम अपनी डेली लाइफ में ईमानदारी और अनुशासन रखेंगे तो ये क्वालिटीज आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाएंगी। तीसरा, स्टूडेंट्स का रोल है सामाजिक जिम्मेदारी निभाना, जैसे कि एनवायरनमेंट को बचाना, सफाई का ध्यान रखना और दूसरों की मदद करना। छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर ही बड़े बदलाव लाती हैं। आज का युवा ही कल का लीडर है। अगर हम अपने गोल्स के प्रति समर्पित रहेंगे और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखेंगे तो हम अपने देश को एक बेहतर और मजबूत रास्ता बना सकते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आज का स्टूडेंट ही कल का लीडर है और हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स ही देश का फ्यूचर बनाते हैं। धन्यवाद।
1: तो बच्चों बजा दीजिए कृतिका के लिए तालियां। और देखिए ना, कृतिका ने कितनी खूबसूरती से बता दिया कि आपको आपके लक्ष्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। मतलब अगर आप कक्षा दसवीं में हैं, जैसा कि आप अधिकतर बच्चे कक्षा दसवीं से संबंध रखते हैं, तो उन्हें अब तक इस बात का ज्ञान हो ही चुका होगा कि उन्हें आगे जाकर क्या बनना है। और अगर अभी तक आपने नहीं सोचा तो ये सही समय है ये बात को समझने का, फैसला लेने का कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, क्या रास्ता होगा, कौन से विषय चुनेंगे और किन विषयों में अगर कमज़ोर हैं तो उस पर अच्छे परिणाम के लिए क्या मेहनत के अतिरिक्त प्रयास आप करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ अब देखिए ना, कार्यक्रम बाल सभा का समय समाप्त होने को है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बजा देंगे आप सभी के लिए जोरदार तालियां।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती विचारा।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: मंदाकिनी जी, सन 2026 कुछ ऐसे शुरू हुआ है विविध भारती में कि उसकी बात ही कुछ और है। हर महीने एक आयोजन होता है जिसका नाम है सृजन भारती, और ये जो सृजनात्मकता की ये लहर चली है, इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहु और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहु और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रीकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो
3: हेलो फरमाइश।

0: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है, देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू
1: हाँ।
0: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
1: हाँ।
0: डायरी लाकर दे मेरी।
1: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही है ना वो होगा नहीं। हाँ
0: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
1: हुँ?
0: अच्छा बता कौन सा काम है?
1: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
0: है।
1: अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
0: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
1: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
0: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
1: हाँ सासू माँ मैं देर करती नहीं, देर हो जाती।

0: आपकी पुकारने से पहले
1: दबा हो जा, रोटी
0: मेरी जल जाती है।
1: दबा हो जा और जल्दी से नाश्ता लिया। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
2: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही है वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
3: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
0: कहा था ना हमने सासुमा कि फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगे ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया, सासुमा एक आइडिया। एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
1: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर?
0: क्यों?
4: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर?
0: क्यों क्यों क्यों क्यों
4: क्यों क्यों क्यों क्यों? बड़ा कौन?
0: आप।
1: सास कौन?
0: आप।
1: तो सुनीता कौन?
0: आप।
1: तो अनाउंसर बनेगा कौन?
0: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट, फिर से कर दे। अच्छा बताइए, सुनीता देवी कौन?
1: मैं।
0: और विवेक भारती की फैन कौन?
5: मैं।
0: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है?
5: मैं।
0: तो कॉलर बनेगा कौन?
5: मैं।
1: करमजलि दास पीटी। ऐसा नहीं होगा, देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
6: अरे बहू, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने?
0: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है। वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
1: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
6: तुम लोग उसे तो बस बहस करवा लो।
0: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं, करते हैं ना।
6: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
0: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
6: ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन
6: ट्रेन ट्रेन
1: ट्रेन ट्रेन।
0: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा। हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं, बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आपके अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
6: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
0: पिताजी वो हेलो फरमाइश
6: पति को बोलने देती है ना, ससुर को ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
1: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर, इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला।
6: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरी करने का काम हम करेंगे। ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
6: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार। इस बीच रिंगटोन बजती है।
1: सुनो जी,
6: हेलो,
1: सुनो जी चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
6: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लिंबो,
1: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
0: सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौसे प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
6: शट अप
1: शट अप।

0: बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है। मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है। वाह वाह, उठाऊं क्या है? उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: देवा देवा, मी किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही। काय झालं, तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला? तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश। अरे सुनिए, हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
1: अरे देवा, लो हिंदी में बोल देती है मैं। मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से।
0: जलगांव से, पानी गांव से।
1: पहले पहले तो ये बोलो, तुमचा फोन कधीच वाजत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं?
0: क्या
1: मैं कितनी बार फोन करता है?
0: अरे
1: अरे, यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ?
0: क्या,
1: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू?
0: अरे
1: अरे, यानी कि आपने अपने मशीन को क्या कर रखा है?
0: ये अनुवाद भी कर रही है।
1: अरे तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायला आवडत का? यानी कि लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
0: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
1: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
0: वो क्या है ना,
1: बहाने बनाऊंगा का।
0: क्या है ना,
1: यानी कि बहाने मत बनाओ।
0: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
0: फिर मराठी?
1: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
0: अरे अनुवाद देखा
1: मी, मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
0: अरे
1: मृणमयी नहीं, जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ। समझा
0: समझा समझा समझा, मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
1: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
0: बाप रे,
1: आया क्या समझ में, यानी कि मृणमयी।
0: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
1: आता तू ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
0: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
1: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
1: बहुत बकवास, एकदम एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है, यानी कि अब लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो? कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
0: अरे
1: क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी जी, मेरा मेरा नाम, मेरा नाम है समता सिंह।
1: ओ अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
0: जी मैं हूँ समता सिंह।
1: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो, मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
0: क्या
1: अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ।
0: अरे बाप रे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसे मारपीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: अरे अरे, गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
0: मुझे क्या पता, मेरा मतलब, अरे, मुझे नहीं,
1: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता हो? होगा। चलो चलो अपने बॉस का नंबर दो।
0: बॉस का नंबर? बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
1: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
0: ओ अरे अरे वो सब छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं।
1: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
0: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई। बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूँ? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलियन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम।
0: जनाम जनाम, ये जनाम क्या होता है?
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ
0: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है?
2: मैं हूँ ना, मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
0: अच्छा,
2: करवालो जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाब।
0: है फिर जनाब? हद है जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
0: हाँ
2: सुनाओ।
0: हाँ
2: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया। अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
2: हाजी हाजी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
0: हाँ
2: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
0: नाता
2: ये
0: है।
2: नाता है।
0: अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन,
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: सुनिए तो सुनिए।
2: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने।

0: प्यार कर
1: काटिए इसका फोन। जिसे मैं प्यार करता था, गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
1: फिर बजने लगी।

0: अब क्या करेंगे? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं जी?
1: बोल नहीं रहे हैं, है? बोल रही हूँ।
0: अरे बाप रे, जी हाँ जी हाँ। हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
0: हाँ
1: हेलो, गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
0: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
1: मैं पुणे से मनीषा बोल रही हूँ, मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
0: है, सास की शिकायत?
1: हाँ,
0: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
1: तो क्या हुआ, आप लोग हमेशा कहते हैं ना कहीं अपने दिल की बात
0: है,
1: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है, खड़ूस कहे की।
0: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
1: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
0: आपकी।
1: तो सब किसे पता होगा?
0: आपको।
1: तो कौन बोलेगा
0: आप?
1: और सुनेगा कौन?
0: आप वो मेरा मतलब मैं सुनूंगी।
1: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
0: हाँ से आ गई है कॉलर। हाँ
1: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
0: हाँ
1: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
0: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
1: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
0: हाँ
1: मेरी सास खड़ूस है।
0: हाँ
1: वो मुझे सताती है।
0: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
1: चुप चुप, बोलो हाँ वरना।
0: हाँ भाई हाँ।
1: उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
0: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना, हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
1: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ
0: हाँ हाँ हाँ।
1: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
0: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
1: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
0: हाँ
1: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
0: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
1: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
0: अरे हाँ
1: हाँ हाँ हाँ। सास को कोसना भी चाहिए।
0: हाँ
1: बोलो हाँ।
0: नहीं पर हाँ।
1: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ। अरे अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गया रे बाबा?
1: हाँ हाँ हाँ। और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
0: अरे भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
1: हेलो
0: भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब ना से रोग हरे सपीरा, ना से रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमवीरा, ना से रोग हरे सपीरा, संकट हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटे देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है, मर्ज करम जली नास पीटी। मर गए, ये मैं कहाँ फंस गई थी, ओफो। मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो
2: प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम।
0: ये बाप रे, ये कौन, ये कॉल लूं,
2: प्रेम प्रेम,
0: ये कॉल लूं कि नहीं लूं? लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
3: सासू जी, 8 बज गए हैं, उठ जाइए ना।
0: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
3: हाँ समता सिंह, अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
0: आप कौन बोल रही हैं?
3: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें, बताइए कौन सा गाना, अरे क्या कह रही है ये?
0: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ, आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
3: हे भगवान, लगता है पानी डाल के जगाना होगा सासू माँ को। ये लो
0: छुपाओ। अरे ये क्या कर रहा, करम जली नाथ पीटी, ये क्या कह, मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
3: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप
1: कौन बोल रही है? समता सिंह है ये क्या था सब?
0: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
3: हेलो फरमाइश का सपना?
0: हाँ पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
4: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
4: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी।
4: सौ सौ साल पगलाओ
0: हमारी सासू जी।
4: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
0: सासू जी। हेलो फरमाइश मैं समता सिंह।
5: हेलो फरमाइश।
6: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो कोई कविता हो इसके इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
6: जी हाँ।
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने
6: और इसका शीर्षक था ये
3: उन दिनों की बात है।
6: तो मंदाकिनी जी ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
3: बिल्कुल
6: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
3: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणाएं होती थी और हम उसको सुना करते थे और उससे प्रेरित होकर फिल्में देखने जाया भी करते थे।
6: चलिए इसका मजा लेते हैं।

0: जनता की विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप पहली बार देखी अशोक कुमार को गद्दार के रोल में। आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार हैं अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप।
1: ये उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम्हारे यहां कितनी टॉकीज हैं तो अपन कहते तीन हैं, एक बंद पड़ी है लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगी। दोनों सिनेमा हॉल एक दूसरे के अगल बगल में थे और उनमें जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती थी। ऐसी कड़ी और सीधी टक्कर कभी कोई भी वो ठंडा पीने वाली कंपनी हो उनके बीच में नहीं रही होगी। तो कई बार दुश्मन खेमों को झांसा देने के लिए आगामी फिल्म वाले बक्से में पोस्टर किसी और फिल्म का लगाया जाता और खटाक से घोषित दिन से एक रोज पहले ही कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती। और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया

फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें। ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती हैं, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, तो बाई ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाई ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यह इनाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और विष्णु में बजती थी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहां ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा, और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अरे जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते न होते सब्र का बांध टूट जाता, सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती, जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उसे कहा जाता कि भाई यार दस्सी कम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, संत समझना, दस्सी कम पड़ रही, मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था, और इस तरह से शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं। बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था, कई लोग मजा लेते थे, कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी, और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता, जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे। यह होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीर कर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना 2 प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें 2 होते थे वैसा तो सामान्य इंटरवल होता।

तो तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई। और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया। पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। ये कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड M.N. प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है। जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है। बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थी। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि अब वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अरे बैठ जा, हट। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। यह संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे। वो अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप बे, ए लेके जा, इसको समझ नहीं आ रहा क्या? उसको
मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता।

थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा, जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दशक तो ऐसा था तो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से

सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली क्या सो भाई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्क पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमय रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई ये साले, हा? मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा समझो उसका जीवन अकारक चला गया। कुछ लोग जो थे मतलब पहला दिन और पहला शो इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश तभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड गर्मी और बारिश सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान न होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेन का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अगर सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे, कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए, मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको मैं एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब जुतकारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को एक सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठहाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिनेमालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे।

0: ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हो और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेटकीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी, राजा हुआ करते थे भाई गेटकीपर, बात नहीं करते थे किसी सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हो, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेटकीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी, तब के गेटकीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी, गेटकीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाक्य है, गेटकीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहां खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहां बैठेंगे यहां पे, अरे क्या बैठने दे, अरे कहां बैठे, पैसा तो दे दिए बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या गेटकीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेटकीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेटकीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था, उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हाल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी, उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी, आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे, क्योंकि भीड़ इसमें कदम कम होती थी, 609 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था, महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थी, 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। यह योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे, और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है, 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक तो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं, ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है, आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती, जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है, रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो अपनी पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं, अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है, बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है, कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं, उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें, यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है, यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहारों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ एनआरआई किस्में हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगकर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असराब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे टैलेंट सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहां जाने जहां, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ दे के परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना बृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभरकर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः है हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, एम एस सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और वीसीडी का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो है वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है, हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहां पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला। वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 इडियट्स ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय। सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीजें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जी लें, याद कर लें चीजों को, आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है
1: हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लैला मंजू रोजाना चार खेलों में आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
2: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
3: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
2: जी हाँ,
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
2: और उसका शीर्षक था ये
3: उन दिनों की बात है।
2: इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
3: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
2: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
3: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनूरी।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

धरती कहे पुकार के फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजनू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मजनू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: एसडी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। मुंबई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओ, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

पूरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती है हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत।

करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है, तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों को, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से होगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा 25-26 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल अब टाल दी गई है। ये फैसला बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के बीच मुंबई में हुई सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया। दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर प्रगति होने के बाद हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बनी। बैंक कर्मचारी संघों ने पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक और पेंशन संबंधी अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पिपली, सोनीपत एवं गुरुग्राम के नए बस अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनाया जाएगा। श्री विज कल देर शाम अंबाला छावनी के निकट लोकल बस सेवा में शामिल हुई 10 नई इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले आपार जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बस अड्डा मेट्रो स्टेशन के नजदीक बनाया जाएगा, यानी जैसे ही यात्री मेट्रो स्टेशन से बाहर आएगा तो उसे वही नजदीक से इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ कुछ अन्य बस अड्डों के निर्माण का काम चल रहा है, उन्हें भी तेजी से पूरा करवाकर जनता को समर्पित किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगभग 20 साल तक अंबाला छावनी में लोकल बस सेवा बंद रही। परिवहन विभाग का दायित्व मिलने के बाद उन्होंने पहली नवंबर 2024 से यहां पर दोबारा लोकल बस सेवा शुरू करवाई। श्री विज ने कहा कि 10 नई बसों के साथ अब यहां पर 25 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें

0: पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित उत्कृष्ट कृति वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कर्मयोगी कृष्ण पुस्तक को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका लेखन हरियाणा सरकार में कार्यरत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर कृष्ण के आर्यन ने किया है। इसके लिए उन्होंने चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर आर्यन ने अपनी पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण के विषय में बताया कि ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महान चरित्र की शुद्ध अभिव्यक्ति है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने आज जींद में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश जन समस्याओं का निवारण मौके पर ही किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल और सोना बचाने के आह्वान पर विपक्ष का राजनीति करना गलत है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय भी देशवासियों से सोना व डीजल पेट्रोल बचाने की अपील की गई थी। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने अन्न संकट के समय देश से एक वक्त का उपवास रखने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री कोई आह्वान करता है तो पूरे देश को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उन्होंने कहा,
1: एक छोटी सोच का परिचय राहुल गांधी ने देने का काम किया जो अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार बताते हैं, लेकिन इतनी छोटी सोच तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में कमी के लिए प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। 8-10 नेता पूरे वर्ल्ड में जो थे उग्रवादियों के टारगेट पे, तो उनमें सारे देश के प्रधानमंत्री भी, हर जगह आज राहुल गांधी को मात मिली है। कांग्रेस आज हाशिए पर है।
0: शिक्षा को अधिक रोजगार परक व तकनीक युक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने केंद्र सरकार की संस्था परख की मदद से स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व रोबोटिक कोडिंग की शिक्षा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने भिवानी में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए प्रदेश भर के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के शिक्षा से जुड़ी संस्था परख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचारों को, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से हुआ था। FM बैंड 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती का सुरीला सफर।
3: दिल को सुकून मिलता है और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

गुमशुदा उस साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी। उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली 5 जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी से

पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्माया गया। उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गुलजन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं। और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अटखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं। ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है। जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सब की तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज का पेड़ है। एक इन्होंने ही जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने

स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने। एक और श्रोता लिखती है कि दो दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहर उठता है, मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था। उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी। बहुत मजा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे, प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है, ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे है। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में।

मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूं, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं और निकलने वाला हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहां तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज ऐसे भारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है, दिल्ली में पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, और रीता अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं क्या, किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी, सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीलों के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की। थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माए गए ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन।

हेलो सजना, इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है।

0: जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहाँ के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की

0: अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल

0: पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: ये तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल

माया का दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मंजू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और

0: चेहरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांवरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सिलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गीत को सुनना चाहा। दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से। और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की, जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये है चंदू हादोले, सीमा हादोले, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, खुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्री, आप सभी की फरमाइश थी।

इस पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शाहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाह गुरई बुरीविली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत।

चोर मचाए शोर स्विंग का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से, और भरत यादव, काजल शर्मा, विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आर्या, भारती, पारस पायल, श्वेता और उवीवेन आर्या।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हनी खेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा कलाना राजस्थान से, विक्रम कड़वासरा, सचेतन कड़वासरा डुमराव बिहार से, वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: और जल्दी कीजिए, हमें भी बाहर जाना है।
1: मुझे भी कॉल लगने वाली है।
2: हाय फ्रेंड,
1: हाय,
2: क्या चल रहा है?
1: फिलहाल तो चाय और सब होते चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
2: चलो सुमित उधर बैठते हैं, खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
2: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए।
3: तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी।
1: आया जी।
4: हाँ बिटिया,
1: हमारी यही दे देंगे।
4: चल
5: बैठ। अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
2: तो ले चाय पी, एकदम गर्म है।
3: अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
5: कहाँ? जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
2: बुदित तू
5: कहाँ?
3: तूने शायद शैम्पू किया है।
2: वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
5: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह। सुमन,
2: सुमन, बुधित, बुधित, सुमन देखो कहाँ,
5: कितनी

0: लग रही है सच में, सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
1: अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुंचनी तैरती हुई चली जा रही है।
0: बस तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से, न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
1: है, क्यों नहीं। अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप, गोरी गोरी दुबली पतली प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कटनार की गली यही कहेगी ना। अरे समोसा का
1: गर्म गर्म खिला रहे हो।
0: हाँ तो फ्रेंड मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। वैसे ये तो चंदन जैसी है पर जरा सुदाप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
1: रीमा तू नहीं सुनेगी
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
1: अरे यार समोसा खाने
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
1: ओ रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। कभी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं कर्म वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सभी?
1: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय बाय सर
2: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? वो यू मीन सुनी। देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चे जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है, आती है तो कहती है डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अदखी अनछुनी ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
0: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
3: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
0: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
3: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
0: रिजर्वेशन?
3: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
0: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
3: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
0: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
3: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
0: ब्याह?
3: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
3: मजाक नहीं सुनी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।

0: हाँ भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
1: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, दो बार बाहर भी हुआ है, सब ठीक ही है। और देख रही तुझसे पूछने के बाद, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बड़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
0: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
1: सुनी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है, पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी है। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना? हाँ
0: सामान बांध लो, सब लाट साहब है, उसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी अभी नहीं कर पाऊंगी, लड़का इंजीनियर है। अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही कैरियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दू रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: तुमने देखा?
1: नहीं रूमा, मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: छोड़ मुझे रूमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे मिट्टी हुई सांप दिखाई दे रही है। मेरा क्या होगा रूमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोनी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल,
1: शोनी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती, सुनी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है। इसे कह दो मंजू, इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी।

0: भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
1: अरे ताई, आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तार जोड़ी है।
0: आइए भाभी, अब उधर देखिए। आइए भैया, तुम्हें चलो।

0: किस्मत वाले हैं, हमारे भी
1: अच्छी है। चाय पी लीजिए, आप लोग चाय पीजिए।
2: क्या कहा? मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
1: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
2: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी, तुम भी पियो, तुम भी पियो, तुम भी पियो।
0: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है? हे भगवान, बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था चांद की बहू आते ही ग्रहण लग गया, हर क्या होगा?
3: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
2: क्या कहा?
0: अरे
2: मैं पागल हूँ।
0: अच्छा
2: तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, पागल हो, पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मन हुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। ये मुझे क्या पहना दिया? हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का क्या हुआ है? झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो? भैया भाभी बुआ करिए नहीं, मैं बाबूजी को बुलाती
2: हूँ। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
4: हूँ, क्या
2: पागल नहीं।
0: बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी,
4: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को दौरा पड़ा है बाबू जी, अनशन बोल रही है।
4: क्या कह रही?
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
4: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर के यहाँ तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा
4: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी,
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी। भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
5: मेरी जिंदगी की शुरुआत वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी आपको मेरी कसम।
1: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं है,
5: तो फिर
1: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई है, लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजिडी हो गई।
5: ट्रेजिडी?
1: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों तक ना सोए और न ही किसी से बात की, उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
5: वहां ठीक रहते हैं।

0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करती हैं।
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाती रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहती हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे माफी की क्या जरूरत थी डेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूं। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नस का कला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं? फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सोने की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पर देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप फिर नहीं कर सकते। कितनी मासूम लड़की है, उम्र भी उससे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।

0: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
1: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
0: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तू? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
1: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
2: क्या बोल बेटा?
0: सुनो बेटा, क्या हो गया? मेरी सुनी बेटी,
1: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
0: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख ही लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
0: ठीक है ठीक है,
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
0: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुनी सो गई मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
0: ठीक है,
1: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
0: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
1: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
0: धोखा? कैसा धोखा?
1: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागल होने के दौरे पड़ते हैं। कई महीने तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, ये तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
0: अच्छा,
1: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
0: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश? ये मेरी मासूम बच्ची सोने, ये क्या?
1: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
0: क्या?
1: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, यही मैं उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तुमसे हम निपट लेंगे।
0: अच्छा
1: ठीक है मम्मा, आप सुमी के पास जाइए।
0: ठीक है। वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छत बताती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य में दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने अपने पति ने क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं? टूटे हुए मुझे हर वक्त समझाते रहते हैं

0: सकता हूँ?
1: ओ आप आइए आइए बैठिए ना। रीना का कोई खतरा? कैसी है वो? और जीजा जी बच्चे तो ठीक है ना?
0: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुनी?
1: अच्छी हूँ।

0: सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
1: यहाँ रहकर भी क्या करूँगा सुमी, एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूँ।
0: कैसे तोड़ दो, ये दुनिया की समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज समाज फिर वही समाज, क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुनी।
0: राजा
1: सुनी
0: रुक जा प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
0: और अब जीत
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया, शायद चंदन से सांप हट गए हैं।
0: और

अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: का पंजा
1: 1985 जमाना
0: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
2: क्या
1: 1993 फिल्म

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का

0: Bunch More Pug. बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार मुंबई आ गए थे ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ थे
2: जी।
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी।
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया छोटे छोटे रोल मिलने तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था।
2: हाँ।
1: डायरेक्टर बाई रमेश तलवार, म्यूजिक बाई कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब चलता कुछ हो नहीं रहा है।
1: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन गई डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन के हिसाब से कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी चला देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर कुमार सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ आ जाओ रमेश बैठो। मनोज अंग्रेज को बुलाओ भाई, ये जी आए भाई, मेरा इसको असिस्टेंट रखो जैसे अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर कुमार ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठंडी में
2: काम बन जाता था,
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सच्चा जीत रे की सारी फिल्में, गुरदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, भूख की शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ वहां पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर ले। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा ने नोट किया, उन्होंने प्रेम लिखा था शतरंजय मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया, इसको डबल से 5 बार से जोड़ कर कोने में बैठा साहब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सुनील का दोनों बैठे थे। तो मैं गया बोलने के भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, बोलकर जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप खुल लीजिए।
2: हाँ
1: फिर बोलिए।

0: और हम आपको कास्ट नहीं बताते, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। वो ऋषि कपूर के साथ उन्होंने बहुत फिल्में करा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
1: जी जी।
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्डअप मिलता है, ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त
1: थे।
0: तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी यार, वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करियर तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे।
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इस पिक्चर को अवार्ड मिलेगा रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं। नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते, सब है, गाने भी देता है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल।
0: और थी भी वो उस तरह की है। तो एनिवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार
0: कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े

0: राजेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन उसमें चेंजेस ले लीजिए। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहे करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लिया तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इंस्टिट्यूटली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो भी दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ,
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूं जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रहे हैं वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया कि ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को कुछ तो मेरे पास कोई आया जो भी कैसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, अपनी स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता सकता।
1: जी जी,
2: उनका ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मुझे नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में आप अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूंगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब मैं काम करता हूँ और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। बोला हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके पांच छह शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके चार पांच, फिर पांच छह शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने।

0: शबन आजमी वाला प्ले।
1: इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस पूर्व डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था कर। और फिर वो मैंने एक बनाई थी एनएफडीसी के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला स्क्रिप्ट। मैंने ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? जिया जी के पास पूछते अगर वो करने के लिए हाँ कर दे। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का एबीसीएल के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था,

0: 50 एपिसोड किए थे उसके, तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। मैंने सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहे और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती, मैं भी अपने लोगों को बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा देखते कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा, डेट होगा टूर का। बोले ठीक है। दूसरे भी हमने शो रखा भाईदास भाई प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिली आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि उनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी में थी, उनका रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा हुआ था, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिल में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आप जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो दर्शन करने शुरू हो गया और फिर हमें अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल में बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में। आप जब जब आप आते आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रो प्ले में और मेरा कभी कभी बीतना आता समय तीन चार, तो सबने अप्रिशिएट किया, तो मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब दिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें जो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए, अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए, इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह का दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर को भी मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रुजी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं जरा प्ले जगह बहुत अच्छा था, मैंने कहा आप करेंगे प्ले, प्ले करूंगा रोल करूंगा, कब करने का हुआ कौन सी स्क्रिप्ट सुनाओ, और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था, उन्होंने सुना और प्ले अच्छा आज तक चल रहा है वो भी, और उसने राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय कोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो इंटरव्यू मारता है कुछ शुरू में, तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसे रोल नहीं करता हूँ, वो प्ले भी हिट हुआ आज तक चल रहा है। उसके बाद विनर जो ये किसी शो पे आई थी अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले, उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है, मैंने कहा हाँ है, मैंने कहा देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया, उनका हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिथिन प्रोड्यूसर हो गया उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल कर दोनों प्लेट में देखा है, मैंने कहा जी वहां जय जी की हाइट कम है आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो, मैंने वैसे जूते बनाए उनके ऑपोजिट रोल किया वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशो का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोट्री के ऊपर उनकी कहानी लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला, शबाना जी ने हाँ कर दिया, मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे, बोले तुम पूछो भाई मैं नहीं बोलूंगी, मैंने उनको सुनाया उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, पढ़ना है खाली ना याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं, तो उन्होंने भी ओके कर दिया, तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर तो उनके राइटर थे उसमें के वो चाहते थे कि वो रोल करे खुद, तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले, शवाना जी को ये थोड़ा करूंगा अब आपके साथ ये करेंगे, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता समथिंग राइटर ने। शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज में, पढ़ा तालियां बज रही है ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है आप किताब पढ़िएगा, तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर शबाना इस पे हम प्ले करेंगे क्या बात करते हो, मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे ये ही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे आप दोनों का पेयर मिल जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा, मेरे तो बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है उसमें आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशो का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है बहुत अच्छा बनेगा, तो फिर एक काम करिए जावेद साहब तो कहिए लिखे, मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए, बोले मैं नहीं कहूंगी मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो कहिए, तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए,
तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करने पड़ती है शवाना की और वो तो आप किसी और आप कवर भी करते हैं रोल और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, वो ओटीटी पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शूट करते रहते हैं। तो इतना में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं। और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना खुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी कि मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन शेट्टी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सिद्धदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो मिलिन पे था प्ले, तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं,

0: फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लगा, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
1: जी जी जी, काबली वाला भी चल रहा है।
0: काबली वाला अवैध है, काबली वाला का ऐसा था कि वही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई प्रक्षित थाने के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल सीजन लेके एक फिल्म बना के आपको सुना दूंगा। और प्रक्षित थानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, तो वो बलराज थानी ने रोल किया था, नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने की, डॉक्टर अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी का भार करता।
1: मैंने देखा क्यूट प्ले है,
0: हाँ बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है,

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जायदा हिना करके एक पाकिस्तान के राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेकर लिखा था और उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो उसके से पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई है और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है, ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी है, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो ही ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी हिसार है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है आकाशवाणी हिसार की प्रस्तुति, फोन कॉल्स पर आधारित ये कार्यक्रम हेलो हिसार। प्रस्तुति रहेगी प्रीति ढिंडोरिया की, तो आइए सुनते हैं हेलो हिसार।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार।

0: हर सप्ताह की तरह आज भी हमारे इस सफर को मुकम्मल बनाएंगी आपकी बातें। तो अगर आपके दिल में है कोई खास गीत की फरमाइश या फिर कोई खास संदेश जो किसी अपने के लिए प्यारी सी बात के साथ आप बांटना चाहते हैं हमारे साथ, तो बस यूं ही इस महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कीजिए हमें कॉल, क्योंकि रेडियो सिर्फ आवाज नहीं है, दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत जरिया भी है। आप हैं आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया के साथ, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चहेते कार्यक्रम हेलो हिसार में। तो चलिए देखते हैं कौन कर रहा है बेसब्री से इंतजार फोन लाइंस के उस पार। हेलो
1: हेलो हिसार।
0: बिल्कुल हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: नमस्ते निपति जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जयवीर प्रजापत बोल रहा हूँ, गाँव सांगा।
0: जयवीर जी कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रहा जी।
0: जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अपना भी बचाव रखिए, पशु पक्षियों का भी ध्यान रखिए और बच्चों का बुजुर्गों का भी ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल जी, पानी रख रखे अपने मंडेरा के ऊपर का।
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल अच्छा,
0: बिल्कुल बिल्कुल, इतनी गर्मी है और ये जो मौसम है लू लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, तो अपना बचाव रखेंगे तो बचाव में ही तो सावधानी है।
1: बिल्कुल सही बात है जी, अपना अपना आकाशवाणी परिवार का ध्यान रखिए आप भी।
0: जी बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, हम भी अपना ध्यान रखेंगे क्योंकि इतने सारे श्रोता साथी हमारा इंतजार करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमें कैसे कुछ हो सकता है। बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: पुरानी फिल्म है जी पंचायत, उसका गाना।

0: ਤਾਂ ਸਈਆ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਜਾਦੂਗਰ ਮੋਰੇ ਸਈਆ ਦਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਪਿਤਾ ਦੱਤ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਜੀ।
1: चलिए आपकी पसंद को हम पूरा कर रहे हैं, भेज रहे हैं ध्वनि तरंगों के माध्यम से ये गीत आपके रेडियो सेट तक।
0: ठीक है, नमस्कार
1: जी, नमस्कार। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, मैं वीरेंद्र मैन बोल रहा हूँ, गाँव देवराय शहर
0: जी वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: से। बढ़िया मैम जी, आप बताओ।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काम काज तो मैम जी अभी नर्मा की विदाई गई है,
0: अच्छा
1: बाकी
0: जी
1: बाकी भी वेल हैं, आपके प्रोग्राम सारे हैं मैम जी।
0: जी हमारे कार्यक्रम आप सुनते हैं, आपके संदेश हमें मिलते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।
1: सभी प्रोग्राम में तो सभी में देते हैं मैम जी, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे ईमेल पर हो,
0: जी
1: हाँ जी, चाहे प्रश्नों का हो, कोई भी अभी सब सभी में लेते हैं।
0: जी जिस दिन आपकी मेल या आपका मैसेज शामिल नहीं होता, उस दिन अपने दोस्तों की पसंद के गीत सुनिए, उसमें भी मज़ा अलग ही है। तो
1: हाँ
0: बताइए,
1: जी,
0: आज कौन सा नया गीत आप सुनवा रहे हैं हमको?
1: ये दीवाना मस्ताना फिल्म का गीत है जी, तेरे
0: कौन सा गीत?
1: बिन दिल लगता नहीं, क्या करूं क्या करूं, उदित नारायण, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज रही मैम।
0: ठीक है, ये गीत हम भेज रहे हैं ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपके रेडियो सेट तक, सुनिए।
1: जी, धन्यवाद मैम जी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते। हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है
1: है।
0: हमारे श्रोताओं से बात करके। उज्जैन के मौसम के क्या हाल हैं?
1: जी करीबन 15 दिन से यहाँ पर 45 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है।
0: जी
1: काफी गर्म हवाएं भी चली है अभी।
0: अपना
1: हाँ
0: बचाव
1: बस
0: रखिएगा प्रेम
1: बस
0: सिंह जी, अपना और अपने परिवार का, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और
1: जी हाँ, उसके लिए मैं बताऊँ ना दीदी आपको, जैसे कि हम सुबह शाम ही घर से बाहर निकलते हैं,
0: जी
1: बस घर पे ही रहते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं, और अगर कहीं जाना भी होता है ना तो पानी की बोतल साथ में ले जाते हैं,
0: जी
1: कैप
0: बिल्कुल
1: पहनते हैं और ग्लास लगा के ही बाहर निकलते हैं।
0: बिल्कुल। एक छाता अपने पास रखिए, कोई कपड़ा

0: रखिए जिससे सर ढककर निकल सकें। और ये हम आपके लिए नहीं, सभी सुनने वालों के लिए कह रहे हैं कि अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपना बचाव अच्छे से कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, इनका ध्यान रखते हैं
0: जी
1: और जो हमारे पास में जो रहते हैं ना, हाँ, उनको भी हम ऐसे ही सलाह देते हैं कि अगर बाहर निकल रहे हो तो अपनी सेफ्टी के साथ निकले। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आज गीत कौन सा सुनवाएंगे?
1: जी फिल्म का नाम है अंदाज, वो है ना किशोर कुमार वाली, हाँ, उसका गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं बताऊँ ना आपको, मोबाइल ऐप पर मैं कार्यक्रम सुनने लगा हूँ आपके हिसार के जी, अभी मतलब आपको के 1 महीने से लगभग मैं कार्यक्रम से हिसार से जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं और अच्छे कौन से लगते हैं सबसे ज्यादा?
1: जी सबसे अच्छा कार्यक्रम तो मुझे हेलो हिसार ही लगता है। हाँ,
0: जी
1: उसमें बताऊं दीदी, हमारे काफी श्रोता से बातचीत होती है ना आपके कार्यक्रम में,
0: बिल्कुल
1: तो उनकी बातचीत भी अच्छी लगती है, उनके पसंद के गाने भी सुनने को मिलते हैं और
0: जी,
1: वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है, तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम लगता है ये
0: बिल्कुल
1: वाला।
0: बिल्कुल। हमारे जो श्रोता हैं वो इंतज़ार करते हैं अपनी कॉल का, पहले लगाने का, फिर सुनने का, फिर अपनी फरमाइश के गीत सुनने का।
1: जी बिल्कुल,
0: जी
1: जैसे गाने तो हम हर जगह सुन सकते हैं, लेकिन आकाशवाणी पर अपनी पसंद का गाना अपनी आवाज के साथ में बजता है ना, तो काफी अच्छा लगता है।
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे श्रोता दूर दूर से हमसे बातें करते हैं, अपनी फरमाइश बताते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपनी पसंद का अंदाज फिल्म का गीत सुनिए उज्जैन में अपने परिवार और दोस्तों के साथ। कार्यक्रम में फोन
1: जी
0: करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: जिंदगी

0: बहन जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए हमारे सुनने वालों को कि हम किससे बात कर रहे हैं।
0: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
1: जगदीश राय गर्ग जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत मजे में हैं बहन जी, आनंद में हैं
1: जी।
0: आप बताओ बहन जी, कैसे हो?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: बहन जी, आजकल गर्मी बड़ी अपना प्रचंड रूप में पड़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना एक गीत गर्मी का ही गीत है।
1: बताइए कौन सा गीत।
0: तो गीत है जी आशा भोंसले जी और किशोर कुमार जी की आवाज में, फिल्म है जी गिरफ्तार। बोल उसके मैं थोड़ा सा तरन में बताऊंगा
1: जी। बताइए।
0: धूप में निकला न करो रूप की रानी, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, कहीं मधुशाला में ताला न पड़ जाए।
1: बहुत खूब जगदीश जी, और ये रूप की रानी को नहीं, रूप के राजा को भी ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज है सबके लिए है कि तेज धूप में घर से बाहर ना निकले बिल्कुल भी।
0: बिल्कुल जी, हमने तो युवतियों को हिदायत दे दी, वो हमको दे देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कार्यक्रम में फोन किया और इतना प्यारा गीत आपने सुनना चाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा।
0: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्कार प्रीति डिंडोरिया मैडम जी, कैसे हो?
0: नमस्कार, हम बहुत अच्छे हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं?
1: हमने तो आपको पहचान ली, गांव कोट जिला भिवानी से किरण कुमार
0: किरण
1: चारण बात
0: कुमार
1: कर रहा
0: चारण
1: हूँ।
0: जी। जी
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी जी किरण कुमार चारण जी, कैसे हैं आप? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: ठीक ठाक है। घर परिवार में अपने भी, आकाशवाणी परिवार और हमारा घर परिवार ठीक है मैडम
0: हाँ
1: जी।
0: जी, सब कुशल मंगल हैं। बताइए, हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं आजकल आप?
1: सभी सुनते हैं,
0: सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: काम करते करते सभी सुनते रहते हैं। हाँ
0: जी, कामकाज सही चल रहा है?
1: मैडम जी, इन दिनों में तो मंदा ही चल रहा है, गर्मी बहुत पड़ने लगी।
0: बिल्कुल, गर्मी में अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा।
1: हाँ
0: बताइए,
1: जी,
0: आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: आज गाना सुनना है मुझे, मैं इंतजाम लूंगा प्रेम का,
0: कौन सा गीत?
1: मुझे ना बुलाया करो, तुम खुद चली आया करो,
0: ये
1: और मेरे दोस्त को सलाम देना मैडम जी, गुंजन डिंडोरिया को नमस्कार देना।
0: जी, जरूर जरूर जरूर, आपका संदेश
1: मैं
0: उन तक
1: जो बात
0: पहुंच
1: करना
0: जाएगा।
1: मैडम, ठीक
0: हाँ
1: है
0: जी,
1: मैडम, मेरी बहन भी याद करती रहती है आपसे,
0: अच्छा
1: रानी चारण। ठीक है मैडम जी,
0: जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी,
1: मैडम ठीक है मैडम जी,
0: ठीक है, कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: डन।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी। हाँ
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी सर, मैं बहुत टाइम से फोन मिला है जी हमारा।
0: चलिए आज मिल गया, देर आए दुरुस्त आए, आपकी बात हो रही है। बताइए अपना नाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाड़ी, जिला फाजिलका, पंजाब से। हाँ
0: पंजाब से आप बात कर रहे हैं हमसे
1: जी
0: जी। क्या करते हैं आप,
1: हाँ जी,
0: क्या करते हैं आप?
1: हम तो जी खेती बाड़ी का काम है।
0: अच्छा जी, खेती का काम करते हैं। तो हमारे कार्यक्रम जो सुनते हैं, जो आप लोगों के लिए हैं,
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी।
0: चलिए अच्छा लगा जानकर, क्योंकि आप लोगों के ज्ञान लाभ के लिए ही जानकारियाँ उन कार्यक्रमों में लेकर आई जाती हैं। और आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज मैडम जी थे मना गानों सुनाइयो नजराना फिल्म से,
0: नजराना फिल्म से कौन सा गीत?
1: मैं तेरा सर छोड़ जाऊंगा,
0: आपकी
1: उससे
0: फिल्म,
1: पहले की याद तू आए मेरी आंखों में आंसू आए।
0: आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में।
1: हमारे साथी अभी कुछ नाम ले लिया मैडम जी।
0: हाँ जी लीजिए।
1: हाँ जी, सुभाष जी गोदारा हीरावाड़ी से, झारी जी पारी का, और सुरेश गगनेदार जी अब जलालाबाद से, और
0: जी
1: जगदीश जी गर्ग है बस स्टैंड मानसा से।
0: चलिए ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में
1: हाँ
0: फोन
1: जी,
0: करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम जी। राम राम जी।
0: राम राम।

0: हेलो।
1: हेलो हिसार जी, प्रीति
0: बिल्कुल, हेलो हिसार कार्यक्रम है।
1: ढूंढोड़िया जी, नमस्कार।
0: बिल्कुल, नमस्कार। हम किससे बात
1: आज
0: कर रहे हैं?
1: हम सतबीर जंगड़ा बोले हूँ जी, कौन दाया जी?
0: जी सतबीर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। प्रोग्राम
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। कामकाज
1: तो
0: कैसा चल
1: बेस्ट
0: रहा
1: किया
0: है?
1: आपने। हाँ
0: जी
1: बिल्कुल बढ़िया चल रहा जी, प्रोग्राम आपका सुना बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी हौसला अफजाई के लिए। बताइए, आज गीत कौन सा सुनवाया आपको?
1: आज फिल्म है जी हुकूमत,
0: कौन सा गीत? हुकूमत फिल्म से?
1: ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा।
0: ठीक है।

0: गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे सतबीर जी?
1: कहना ये जी, गर्मी का मौसम आ गया है, अपने शरीर का पूरा पूरा ध्यान रखें, जब भी बाहर निकले तो अपना अंगोछा का साथ सर पर बांध के निकले
0: जी,
1: पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ जी लीजिए।
1: दिलबाग भाटी, शिलोंग से डायर।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इतने ज्ञान लाभ के संदेश के लिए और इतने प्यारे गीत को सुनने के लिए, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ
0: कैसे हैं आप?
1: जी। मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी आज बहुत ही दिनों के बाद हेलो स्टार में कॉल लगी।
0: अच्छा जी, चलिए आज लग गई आपकी कॉल, आपकी बात हो रही है, आपकी फरमाइश भी पूरी की जाएगी, बताइए।
1: असल में मैम काम में बिजी रहते हैं ना तो
0: क्या काम
1: ध्यान
0: करते हैं
1: नहीं।
0: आप?
1: मैं मिठाई का काम करता हूँ,
0: मिठाई
1: कारीगर हूँ,
0: बनाते हैं?
1: मिठाई
0: अच्छा।
1: बनाता हूँ। तो रात को फ्री रहता हूँ तो रात को सारे ही जितने भी 11 बजे तक आपका प्रसारण आता है सब सुनता हूँ।
0: चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा जानकर, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और हमारे सुबह के
1: और
0: ट्रांसमिशन को भी सुनने
1: आकाशवाणी
0: की कोशिश
1: हिसार के
0: कीजिएगा।
1: सारे ही प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं, बहुत अच्छे
0: जी
1: लगते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: मैम फिल्म का नाम है बंदिश, 1980 की, ये राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माई गई है। इसका गीत है मैम रंग, थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ मैम।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के।

0: कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिल में उतर जाती हैं। आज आप सभी की बातों ने भी हमारी शाम को यादगार बना दिया। शुक्रिया इस खूबसूरत से साथ के लिए। फिर मुलाकात होगी आप सभी के चहेते कार्यक्रम हालो हिसार में, इन्हीं सुरों, इन्हीं एहसासों और आपकी प्यारी प्यारी आवाजों के साथ। अब आप सभी की अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया लेना चाहती है इजाजत आज के हालो हिसार कार्यक्रम से। हम फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आकाशवाणी हिसार के साथ गुनगुनाते रहिए।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: 90।
1: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
2: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: नया बेहतर है
4: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
5: दिल चीज क्या है?
3: नया श्रेष्ठ है
4: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
3: नया उत्कृष्ट है
4: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
5: चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
3: नया अनूठा है
2: किंतु पुराना अनुपम।
3: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज

0: क्या आप खुश हैं? आज मैं ऊपर।
1: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
2: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
1: या आप प्यार में हैं?
3: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
4: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
1: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: अभी आप सुन रहे थे हेलो हिसार, प्रस्तुति थी प्रीति ढिंडोरिया की। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी हिसार है। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: नया बेहतर है
3: क्योंकि तुम ही हो,
1: किंतु पुराना बेहतरीन।
4: दिल चीज़ क्या है?
2: नया श्रेष्ठ है
3: केसरिया तेरा,
1: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
2: नया उत्कृष्ट है
3: तेरी गलियां,
1: किंतु पुराना अनमोल।
2: नया अनूठा है
1: किंतु पुराना अनुपम।
2: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे
1: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
2: हर बुधवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
2: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है,
5: चकरकची चाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
2: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
6: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी। एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
1: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
2: हर रविवार सुबह 10:30 पर
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 35 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा

सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले पांच दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में दो विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, हमने उनका अनुप्रसारण किया। ये आकाशवाणी हिसार है, आइए अब जानते हैं कार्यक्रम रूपरेखा। शाम 6:20 पर प्रभु वंदना पर आधारित सुनेंगे आप कार्यक्रम भक्ति संगीत, और घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा श्रोताओं, भयंकर गर्मी से कैसे करें बचाव। समय रहेगा शाम 6:30 और कार्यक्रम भारी पसंद आप सुन पाएंगे शाम 7:00।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और इसके अंतर्गत रात्रि 8 बजे सुनिएगा व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तरानी। रात्रि 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे और रात्रि 9 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। समाचारों के ये अंक प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 से रात्रि 10 बजे तक सुनिएगा विविध भारती आकाशवाणी मुंबई के कार्यक्रमों को।

ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई फरमाइश आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। प्रस्तुति रहेगी आकाशवाणी हिसार की।

राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे रात्रि 11 बजे और 11 बजकर 5 मिनट पर सुनिएगा राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी हिसार है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: रहे इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के टाउन पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को स्वस्थ और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में होगा। सभी 23 जिलों में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। और फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद की सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में 4 दीवारी के निर्माण, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, कंक्रीट पैदल पथ, ओपन एयर थिएटर, मुख्य प्रवेश द्वार के नवीनीकरण तथा 3 नए फाउंटेन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, गणमान्य व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री विपुल गोयल ने कहा,
1: टाउन पार्क के अंदर जो आज ये काम है, देखो 6 महीने का हमने ड्यूरेशन रखा, 3-4 महीने के अंदर हम इसे पूरा करने का काम करेंगे। और सिर्फ ये 9 करोड़ रुपए नहीं, कुछ काम इसमें रह गए थे जो टेंडर के अंदर नहीं आए, लगभग 6-7 करोड़ रुपए और इसके अंदर ऐड होंगे। 15-16 करोड़ रुपए लग के इस पार्क को और बेटर किया जाएगा। इसके अलावा 28 तारीख को नए वाटर कूलर की डिलीवरी हो जाएगी, 29 तारीख को तो वाटर कूलर और जगह जगह पर लग जाएंगे, जिससे हमारे लोगों को पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। और ये भी बताना चाहता हूँ, वाटर कूलर के साथ आरओ वाटर सिस्टम भी है, और जो पहले आरओ वाटर लग रहा है उसको भी हमने बेटर करने का काम किया है।
0: उन्होंने कहा कि सेक्टर 12 के खेल परिसर और स्टेडियम के विकास पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इसके तहत स्टेडियम को नया स्वरूप देने के साथ साथ उसमें कई आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित मैराथन को झंडी दिखाई। मैराथन दौड़ में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्राओं सहित हजारों की संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला प्रशासन एवं बी सत्य फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित ये मैराथन सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक भवन से शुरू होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पर आकर समाप्त हुई। इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री ने युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए सुबह की दौड़ के लिए प्रेरित किया। श्री गौतम ने युवाओं से नशों से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

0: तुम्हें तुम्हें गीत और शरीर को ठीक बनाएगी। मैं तमाता हूँ कि जब स्वस्थ शरीर रहता है तो स्वस्थ सवाल रहता है। से पैर से पैक्त प्रे कर आइएगा कि आने वाले समय पर तीरक है नंदे से दूर रहिए।
1: उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी मेहनत लगन तथा क्षमता के बल पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्री गौतम ने लड़कियों द्वारा दी गई प्रस्तुति को भी सराहा।
0: हमारी बहनों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक करते हम सबको वो इच्छा हमारी बहनों ने माँ दुर्गा और माँ काली का अपहरण दिखाकर ये बताया कि हमारी बेटियां हमारी बहनें इस प्रकार के कष्ट लगा रही है।
1: इस अवसर पर मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों सहित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज कुरुक्षेत्र में शहीद स्मारक पर ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व सैनिकों एवं वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली के दौरान आमजन को ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित किया गया और स्वच्छ एवं हरित भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉ. जयदीप आर्य ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा। उन्होंने कहा कि सभी 23 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस बार सभी जिलों के उपायुक्त योग दिवस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम को हरियाणा योग आयोग आयुष विभाग हरियाणा द्वारा अन्य विभागों के तालमेल से मनाया जा रहा है। डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हरित योग के तौर पर मनाया जाएगा जिसके तहत प्रत्येक जिले में 10,000 औषधीय पौधे आयुष व वन विभाग के सहयोग से लगाए जाने का प्रावधान है। इसके तहत नीम पीपल जामुन अर्जुन बड़ का पेड़ और फिर हर्ब्स जैसे तुलसी गिलोय हार श्रृंगार एलोवेरा लगाए जाएंगे। ये पौधे प्रत्येक योगशाला में सभी निजी व सरकारी विद्यालयों के प्रांगण में लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्राचार्यों से अपील की कि यदि कोई विद्यालयों में पौधे लगाना चाहता है तो वो उस जिले के जिला आयुष अधिकारी व जिला वन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की कड़ी में आज भिवानी के बाल सेवा आश्रम प्राथमिक विद्यालय में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन आपकी योगशाला सर्व मंगल संस्था एवं गोरक्षा दल भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह ऊर्जा और अद्भुत अनुशासन का परिचय देते हुए विभिन्न योगासनों प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का अभ्यास भी किया। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 30 किलोग्राम से अधिक गांजा और 8 ग्राम 56 मिलीग्राम स्मैक बरामद किया है। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध वरुण कुमार दहिया ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने साहिल और अनीश को MBN पाली रोड से एक कार सहित गिरफ्तार किया। इनके पास से 21 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद हुआ।
2: हैबिचुअल ऑफेंडर जो कि साहिल नाम से एक लड़का है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, काफी इस तरीके एनटीपीएस रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और उससे 21 किलो 55 ग्राम लगभग जो गांजा है उसी गाड़ी से बरामद करा गया है। 23 तारीख की ये घटनाक्रम है जब हमारे ऊंचा गांव इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुंदर के पास सूचना प्राप्त हुई थी। उसके ऊपर उन्होंने टिप ऑफ किया और नाकाबंदी करी और फिर जब मौके पर इंटरसेप्ट करा गया एक व्हीकल को जब उसकी छानबीन करी गई और जानकारी ली

0: अधिकारियों को बुलाया गया और तलाशी के दौरान उसके पास कमर्शियल क्वांटिटी का एनडीपीएस सब्सटेंस मिला।
1: इसके अलावा ग्रेटर नोएडा निवासी अमित को फतेहपुर तदा गांव से 8 किलो 200 ग्राम गांजा सहित और संतोष को 352 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि हसीन उल्ला को 480 ग्राम गांजा सहित दबोचा गया। वहीं वसीम को 8 ग्राम 56 मिलीग्राम स्मैक के साथ नेहरू कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के टाउन पार्क में विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने युवाओं को स्वस्थ और नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पलवल में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी हिसार है। आइए सुनते हैं प्रभु वंदना पर आधारित भक्ति संगीत।

0: करते जलता आकाश, प्यासे जीव जंतु करे पानी की तलाश। प्यासे को पानी दे, तपते जीव को दे छाया, गर्मी दूर करने को वृक्ष लगाएं, शीतल हो जाए काया। घर आंगन सुनने वाली सभी बहनों को आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज का मौसम तपता हुआ जलता हुआ मौसम और एक विशेष तरह की फेज जो इन दिनों के मौसम में आ रही है। हालांकि गर्मी हर एक साल पड़ती है, लेकिन लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों की तुलना में अब की बार गर्मी और भी ज्यादा है और हीट डोम यानी हीट वेव्स की सिचुएशंस आ चुकी है। हीट डोम एक मौसमी और वायुमंडलीय घटना है जिसमें गर्म हवा ऊपर से नीचे की तरफ वापस आ रही है, न कि वो वातावरण में फैल रही है, जिसका परिणाम ये है कि भीषण गर्मी की स्थिति पैदा हो रही है और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर वायुमंडल पर पड़ता है तो इसकी ऊपरी स्तर पर एक उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है जो कि गर्मी को बाहर जाने से रोक रहा है। इसका परिणाम जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर, जल के स्रोतों पर, सब पर देखा जा सकता है। रात को हुई हवाएं जो ठंडी थोड़ी सी महसूस होती हैं, जैसे जैसे भगवान भास्कर अपनी गति बढ़ाता है वैसे वैसे उन हवाओं की गति भी तेज और गर्म होती जाती है और दिन में बाहर निकलना मुश्किल सा हो गया है। स्कूलों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लेकिन ये बच्चे घर में रखना और इनको बाहर जाने से रोकना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि बाहर के वातावरण को सहन करने की शक्ति हमारे बच्चों में हो, हमारे परिवार में हो, और ये जो बाहर का गर्म वातावरण है इसको बचने के लिए घर पर हम क्या तरीके अपनाएं, किस तरह से इस गर्मी से अपना बचाव करें ताकि हम इस मौसम से पार पा जाएं, क्योंकि मौसम तो बदलता ही रहता है। जैसे ही मानसून आएगा हम इस गर्मी की गर्माहट को भूल जाएंगे और बारिश की बूंदों में अपना ठंडक का आनंद लेंगे और फिर सर्दी आने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से इस पिछले मौसम की यादों को भूल जाएंगे। लेकिन अभी इस समय हम क्या ऐसा करें कि इस गर्मी के मौसम से निजात पाएं और इस गर्मी के मौसम से स्वस्थ बाहर निकल जाएं? उसके लिए जरूरी है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, अपने आसपास के क्षेत्र को ठंडा रखना और अपने खानपान में बदलाव करना। बहनों, सर्दी में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए जिस खाने पीने की हमने इंटेक किया था उसको अब पूरी तरह से बदलना होगा। जैसे ही हम मौसम बदलते ही रसोई घर में अपने मसालों को बदल लेते हैं, अपने खाने पीने की चीजों को बदल लेते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को भी गर्मी में ठंडी तासीर की चीजों की जरूरत होती है। इस बात को हमें समझना होगा और बाहर के वातावरण को ठंडा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से हमें बाहर के वातावरण में तापमान को कम करने के प्रयास करने होंगे। जितने भी जल स्रोत हैं उनमें जल और कम ना हो इसका प्रयास हमें करना होगा। उस जल को हम प्रदूषित ना करें ये भी हमारे ही हाथ में है। और उसके साथ साथ जैसे ही हम अपने घर में जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बिजली से उत्पादित चलने वाले, अंदर के वातावरण को ठंडा रखने वाले जितने भी हमारे पास गैजेट्स हैं, जैसे एसी है, उनको अगर हम कुछ सीमित मात्रा में चलाएं और बाकी का जो समय है वो हम ऐसी प्रकृति के सुकून में, प्रकृति की छाया में बिताएं जहां हम ठंडक को महसूस कर सके, तो शायद हम तापमान को बढ़ाने में योगदान नहीं देंगे और उसको कम हम कर सकते हैं। इन बातों के लिए छोटे छोटे प्रयास जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपने खान पान में बदलाव करें, घर के बुजुर्गों को जरूरत पड़ने पर पानी की उचित व्यवस्था करवाएं, पानी के साथ साथ उनको नींबू, शिकंजी, छाछ, लस्सी और ऐसे पेय पदार्थ जो ठंडी तासीर के होते हैं जिनमें पुदीने का सेवन, गोंद कतीरा का सेवन अगर करवाते हैं तो वो गर्मी से बचे रहेंगे। और इसी तरह से घर के बच्चों को भी आदत डालें कि वो ठंडी तासीर की चीजों को सेवन करें ताकि उनका शरीर इस बाहर की गर्मी को सहन करने के लिए तैयार हो जाए। बहनों, जब लू का समय होता है यानी हीट वेव का समय होता है, जब तापमान बहुत ज्यादा होता है और हवाएं चल रही होती हैं और वो हवाएं गर्म होती हैं, उस समय जब हम बाहर निकलते हैं तो हम उस हवा के सीधे संपर्क में आते हैं, जिससे हमारे शरीर को लू लगने का और गर्म होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि तपती भरी दोपहरी में हम बाहर ना निकलें। लगभग 11 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक, जब ये हवाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं, तब हम बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। कोई बहुत मजबूरी है तो अपने साथ पानी की बोतल और सूती कपड़े से सिर अपना ढककर बाहर निकलें। कोशिश करें कि आसपास जितने भी लोग जिनको आप देख सकते हो, जिनकी मदद आप कर सकते हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। अबोले जानवर जो पानी मांग नहीं सकते, उनके लिए भी जगह जगह पर पानी की व्यवस्था करें। कभी भी किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि उसको चक्कर आ रहे हैं, या वो प्यासा है, या वो गिर पड़ा है, बेहोश हो गया है, तो उसको संभालने की व्यवस्था भी हम करें। इस बात का कर्तव्य हमें निभाना होगा, क्योंकि गर्मी से हम सबको बचना है और इस गर्मी से निजात पाना है, तो हमें इन बातों का, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना होगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर चहल इस बारे में क्या कहते हैं कि इस हीट डोम से अपना बचाव कैसे किया।
1: मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनदीप सिंह हूं। आजकल हम सब देख रहे हैं कि गर्मी अपने चरम पर है और पारा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक टर्म आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, हीट डोम्स। सीधे शब्दों में कहें तो जब वायुमंडल में गर्म हवा एक गुब्बारे या ढक्कन की तरह किसी इलाके को घेर लेती है तो वहां की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और मौसम बेहद गर्म और दमनकारी हो जाता है। इसी स्थिति को हम हीट डोम्स कहते हैं, जिसके कारण हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक मेडिकल प्रोफेशनल और फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस भीषण गर्मी का सबसे पहला और सीधा असर हमारे शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत पसीना आता है। पसीने के रास्ते हमारे शरीर में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जरूरी इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटासियम भी बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी कहते हैं। जब शरीर में पानी और इन मिनरल्स की कमी होती है तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसे हम मसल क्रैम्प्स कहते हैं या नसों का चढ़ना भी कहते हैं। अचानक से पिंडलियों में, पैरों में या पीठ में तेज दर्द और अकड़न होना इस मौसम

में बहुत आम बात है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर पूरे शरीर को कमजोर और हीट स्ट्रोक का रूप ले लेती है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सरल और जरूरी बातें हैं। सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है, पानी के साथ साथ ORS का घोल, नींबू पानी, नारियल पानी या लस्सी छाछ का सेवन जरूर करें, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बना रहे। प्यास लगने का इंतजार न करें, हर आधे या एक घंटे में पानी पीते रहें। बच्चे व बुजुर्ग इस गर्मी से बेहद ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो उनको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रहना चाहिए। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत जरूरी न हो तो ही बाहर निकलें या बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना ही पड़े तो सिर पर सूती कपड़ा या छाते को सर को ढककर रखें। क्रैम्स आने पर क्या करें? अगर अचानक किसी मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्स आ जाए तो तुरंत छांव या ठंडी जगह पर बैठ जाएं। धीरे धीरे उस हिस्से को स्ट्रेच करें और तुरंत पानी या ORS का घोल पिए। उस जगह पर मालिश करने के बजाय ठंडी पट्टी या बर्फ से सिकाई करें। इस गर्मी को हल्के में न लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।

0: Akashwadi at 90.
1: घरेलू उपायों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी इस गर्मी से निपटने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इकट्ठे मिलकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे लोगों की जान बचने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभियान महासचिव द्वारा अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए एक वैश्विक अभियान है, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा, विज्ञान आधारित डेटा का उपयोग और वैश्विक तापमान को सीमित रखना है। दूसरी तरफ हीट एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं, जिसमें हरेक देश में स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे नियम और अभियान लागू किए गए हैं जिसके तहत कूल रूफ यानी छतों को ठंडा रखने वाली तकनीक, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे कैसे लगाए जाएं और शहरों में जहां की तापमान गांवों की तुलना में ज्यादा होता है वहां पर कूलिंग सेंटर्स यानी ठंडे आश्रय स्थल स्थापित करना शामिल है। स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से WHO और फीफा जैसे संगठनों द्वारा बीट द हीट जैसी पहल चलाई जा रही है, जहां पर सार्वजनिक कार्यस्थलों के आसपास किस तरह से ग्रीन बेल्ट बनाई जाए, किस तरह से वहां के तापमान को कम करने की कोशिश की जाए, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग अपने काम के लिए चुस्त दुरुस्त पूर्व चेतावनी प्रणाली पर लगा हुआ है, जहां वो सैटेलाइट तकनीक की मदद से सटीक अलर्ट जारी करते हैं ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके और अपनी जान को बचा सके। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हीट डोम जैसी घटनाएं भविष्य में ना हो और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। इस तरह के प्रयास करके हम जैसे जैसे टेम्परेचर को रोकेंगे हमारी धरती, हमारी प्रकृति जीवित रहेगी और प्रकृति की हरियाली फिर से लौट आएगी, इसके संभावनाएं भी हैं। बहनों, आज से 50 साल पहले का अगर हम देखें वातावरण तो तब तापमान इतना बढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मिट्टी के घर, आसपास पेड़ पौधों का

होना, साफ पानी की लहरें, साफ पानी की नहरें चलना और प्रदूषण का कम होना, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से तापमान नियंत्रित था और इतनी भयंकर गर्मी का सामना जीव जंतुओं को और मनुष्यों को नहीं करना पड़ता था। आधुनिक तकनीक में भी हम ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरों में भी अब इस चीज के प्रति रुझान बढ़ा है कि किस तरह से घर का एक हिस्सा कच्चा छोड़ा जाए और उस पर प्राकृतिक रूप से मिट्टी के कमरे या मिट्टी की झोपड़ी बनाई जाए और जो जल स्रोत है वो जमीन तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करे। आजकल सिर्फ कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं बल्कि जो पक्की मिट्टी यानी कंक्रीट और चूना और रेत का प्रयोग हो रहा है उससे जो दीवारें और फर्श बन रहा है, जो टाइल्स बन रही हैं, उससे जो बहता हुआ पानी है उसका धरती में जाने की संभावना बहुत कम हो रही है, यानी बोरिंग बहुत कम हो रही है। और अगर ऐसा होगा तो धरती का पानी बहुत नीचे चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि यह हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। इससे पहले हमें चेत जाना जरूरी है, हमें जागृत होना जरूरी है, क्योंकि जल स्रोत तभी कामयाब होंगे जब उनका जल परिपूर्ण होगा और वो पीने के योग्य होगा। बारिश और सीलन से बचने के लिए दीवारों पर जो प्राकृतिक रेजिन का प्लास्टर किया जा रहा है वो बारिश से तो बचा देते हैं लेकिन दीवारें ना तो नम होती हैं, ना मिट्टी की वो सौंधी खुशबू हमारे घरों तक भीतर तक पहुंच पाती है। दादी नानी की कहानियों में सिमट कर रह गई है वो प्राकृतिक खुशबुएं, वो प्राकृतिक सुगंध जो वास्तव में हुआ करती थी। पेड़ों की सुगंध से पहचान में आ जाता था कि ये नीम का पेड़ है और इसको कैसे हम अपनी लाइफ में, अपने दैनिक उपयोग में ला सकते हैं। बहनों, संभव है कि घर की छत पर हम थोड़ी सी हरियाली करें ताकि नीचे का तापमान, घर के अंदर का तापमान कम हो और एसी की जरूरत कम से कम पड़े। अपने घर के आसपास कुछ ऐसी हरियाली की व्यवस्था की जाए जहां पर हम हरियाली को लाकर तापमान को नियंत्रित कर सके। तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठंडे और जो ठंडे घर जो हम बना सकते हैं जिनमें बिजली की खपत कम होती है, जो दोनों तरफ से ही हमारा फायदा करती हैं, हमारी प्रकृति भी हमारे पास रहती है और बिजली के बिल से भी निजात मिलती है और देश को भी इससे फायदा होता है। टिकाऊ और सुरक्षित घर बनाने के लिए हम ऐसे प्राकृतिक चीजों का प्रयोग कर सकते हैं जिनको रीस्ट्रक्चर्स भी किया जा सकता है, जिनको बनाकर हमें उनमें भूकंपरोधी होते हैं ऐसे घर। हमारे यहाँ हरियाणा में मैदानी इलाका है तो इनकी जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम लकड़ी के और मिट्टी के घर बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कीमती भी नहीं होते और हमारी रेंज में ही हमें वो एक अच्छी और स्वस्थ जीवन शैली बिताने के लिए सुविधा दे सकते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी घर के आसपास का वातावरण को हम जितना शुद्ध रखेंगे, पर्यावरण और स्वास्थ्य एक दूसरे से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का आसपास हम लगाएंगे, रोपण करेंगे, उतना ज्यादा वातावरण शुद्ध होगा और उतना ही ज्यादा हमारा बीमार होने के चांसेस कम होंगे। रसोई घर में हम बजाय अब इन दिनों में तली फली चीजें खाने के, बहुत ज्यादा हैवी डाइट लेने के, हम कोशिश करें प्याज, नींबू, ककड़ी, खीरा और जितने भी पेय पदार्थ हैं जो ठंडी तासीर के हैं उनको अपने भोजन में शामिल करें। घर के बाहर जो गर्मी है उसको घर के भीतर की ठंडक से हम बीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें योगा और अपने स्वस्थ होने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारा मन स्वस्थ है तभी हम इस गर्मी में भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। बहुत जलती तपती दोपहरी में भी अगर हम अपने मन से शांत हैं तो हम उस गर्मी को कम महसूस कर सकते हैं। बचने के प्रयास हमें करने हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को हमें अपना बिल्कुल संतुलित रखना है ताकि हम बिल्कुल शांति के साथ इस मौसम को पार पा जाएं और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये मौसम बदलते रहेंगे, हम आने वाले हर एक मौसम का आनंद लेंगे, जो मौसम हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है उसके भी पार हम पा जाएंगे। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

गर्मी से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे ही उस पे कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दे कि उनको होश नहीं आ रहा है या शरीर ढीला पड़ रहा है तो एकदम से ठंडी जगह पर लेकर जाएं, कपड़ों को थोड़ा सा ढीला करें, शरीर पर ठंडे पानी या बर्फ रखकर तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश करें। अगर तब भी स्थिति संभल नहीं रही है तो डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। छाया में लेकर जाने से या किसी ठंडी जगह पर लेकर जाने से उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होने लगेगा। तरल पदार्थ का सेवन करवाएं अगर वो होश में है तो, और उल्टी नहीं कर रहा है तो। ठंडा पानी या नींबू पानी या ORS का घोल या नारियल पानी की अवेलेबिलिटी है तो उसे पिलाएं। पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा करके उसे रक्त के संचार के लिए सुकून बनाएं, सही बनाएं, ताकि उसकी बॉडी में सही ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए। बहुत ज्यादा पसीना अगर आ रहा है तो उसके बाद त्वचा अगर बहुत ज्यादा सूख गई है तो डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाएं, किसी भी तरह का इंतजार ना करें। लगातार बुखार चढ़ रहा है और वो नहीं टूट पा रहा है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तेज सिरदर्द, चक्कर आना या किसी इल्यूजन में रहना, उल्टी होना, बेहोशी में आना, ये सारे सिम्टम गर्मी लगने के हैं और आप तुरंत डॉक्टर को बिना देर किए जाकर मरीज का इलाज शुरू करवाएं। बहनों, बहुत जरूरी है कि प्यास न लगने पर भी बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें, और जहां भी निकासी की व्यवस्था हो, जहां से भी हवा बाहर जा सकती हो, वहां से आप ऐसे घर में इस तरह के खिड़कियों का खुला रखें उन्हें शाम के समय। दिन में खिड़की

क्यों को खुला बिल्कुल भी ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। बहनों, हमें इस गर्मी से बचना है, इनकी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। और अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम आपके साथ और समय तक ठहरे, तो जरूरी है कि आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं का जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम घर आंगन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। आप चाहें तो ईमेल पर भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radiohisar@gmail.com। और अब दीजिए आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा को इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे घर आंगन कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी हिसार है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी पसंद। प्रस्तुति रहेगी आजाद सिंह की।

मारी पसंद कार्यक्रम सुननी है सारे बाण भाइया ने आजाद भाई की राम राम। किस्से कहानी गीत रागनी बात बानगी प्यार प्रेम भाईचारा मारी संस्कृति की पहचान। एतवार के दिन 7 से 8 बजे तक भाई रागनिया की बात देखा कर उनकी मनपसंद रागनी किस्से की बात हर रागनी के साथ हम आपके लिए लेके आ करें। हम आपते रोज न्यू कहा करें भाई आप ठोस्ट्रिक प्रतिक्रिया मार दो इस पते पर जरूर लिखा करें कि कार्यक्रम मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001। तो फिर आज के मारी पसंद कार्यक्रम में हम आपके लिए आज पत्रोत्तर गीत कार्यक्रम लेके आए हैं। चिट्ठी आपकी पहुंची है पसंद के नाम बताऊंगे भाइया ने जो सुझाव लिखे हैं उनके उत्तर भी देंगे।

आकाशवाणी सार से हर रोज सुबह 7:10 पे हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग प्रसारित किया जाए। खेती बागवानी पशुधन और किसानी कार्यक्रम किसान वाणी और खेती किसाना सीति हर रोज शाम को 7:00, जिसमें कृषि ज्ञान विज्ञान अन्न आय उपज उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी के अलावा प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करवाई जाए। गांव की बात आप सबके साथ, शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार की जानकारी कार्यक्रम मारे गांव के अंतर्गत हर रोज शाम को 7:30 आपके लिए लेके आ करें। लोक संस्कृति संगीत और समसामयिक विषयों की जानकारी के साथ कार्यक्रम हरियाणवी लोक मंच हर मंगलवार को रात 8:00 प्रसारित किया जाए। किस्से कहानी गीत रागनी अपनी पसंद की रागनी हर एतवार को शाम 7:00 आप सुन सकते हैं।

पहली चिट्ठी आई है गांव खटकड़ जिला जींद से लिखने वाले भाई हैं भूपेंद्र सिंह राजेश करमबीर और रामफल भाई लिखे कि आपके कार्यक्रम हमने बहुत पसंद आए हैं ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी फिल्मा के गीत सुनवा कर भाई भूपेंद्र राजेश करमबीर और रामफल हमारा एक प्रयास है हफ्ते में दो बार का तो नहीं कह सकते एक बार कौन से कार्यक्रम में हम आपके लिए हरियाणवी फिल्मा के गीत लेके आवे चाहे लोक मंच की बात है मारे गांव थारी मारी पसंद मारी पसंद उसमें आपके लिए हरियाणवी फिल्मा के गीत ले क्या करें बस दिक्कत थोड़ी सी है कि हरियाणवी फिल्में थोड़ी हैं और उनमें गीत

0: और भी थोड़े, क्योंकि आकाशवाणी पे हम वही गीत प्रसारित कर सके हैं जो प्रसारण के योग्य हों, जिसने सारा कुंबा सारे घर के एक साथ बैठ के सुन सके। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा हरियाणवी फिल्मा के गीत सुनवाए जा। भाई लिखे कि आप एक रागिनी है बाली शर्मा की आवाज में, माँ भारत की किसी की रागिनी सुनवाओ। तो भाई आपने जो फरमाइश करी है बाली शर्मा और साथियों की आवाज में, बात उस टाइम की रहेगी जब वो द्रौपदी सुदेशना के पास दासी के रूप में रहन लाग गई। उधर कौन के कीचक अपनी बहन सुदेशना से पूछे है, आए वे बेया कौन। सुदेशना कहने लगी, भाई या तो मेरी दासी है। कीचक कहने लगा, ए बेबे तू इसने मेरे महल में भेज, मैं इसने रानी बना के रखूंगा। सुदेशना कहने लगी, भाई बोला ना बने, जो तू सोचे है या इसी औरत को ना, और जे तू मेरा और खुद का भला चाहे तो बोल बाला लेकर जा। वह सुदेशना कीचक को क्या समझाती है उस मौके की बात बाली शर्मा और साथियों की आवाज में।
1: जबान चलिया जा रे, इस समय तेरा भला

सुखी मत ना समझे, किसी का सुखी मत ना समझे, या पूरे नेम परने की अपने कहे हुए बचनाते, या हर गिज नहीं करने की।

करेना या सब आमर ये ते न्यारा इसका दासी मतना समझे इसने राजपाट अनसारा इसका कजन कजे लिया देख जनता या

गन के बोते और आछी भुंडी रे कहे बीजी पे मर जागी रो रो के तखे मां मना के सादा अपनी इज्जत ने भी खो के इसके पास पति बलवान इस

बाईयान सुनी रागनी बाली शर्मा और साथियों की आवाज में। अगली चिट्ठी आई है गांव कुचराना खुरुद से भाई सुरेश रमेश कुलदीप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चिट्ठी लिखी। ये न्यू भी कहना चाहूँ कि एक रागनी सुनवा दें और किस्सा है पद्मावत का। पद्मावत के किस्से की रागनी सुननी चाहिए। गांव अलीपुरा ते जगबीर दयाराम सतबीर और रमेश बूढ़ा खेड़ा जीन ते रामनिवास निर्मला प्रवीण और कमलेश। तो आपने सुनवाऊंगी रागनी मास्टर सतबीर भैंसवालिया और साथियों की आवाज में। बात उस मौके की, किस्सा पद्मावत में थे जब वो पद्मावत की सहेलियां पद्मावत को जुलावे हैं। जोटा फिर गया पद्मावत कहन लागी आए तब न जुलाना भी नहीं आता। रखे बीरा की पिंग गीतां गले सजा कर कोई गीत ना कोई मल्हार ना थम गूंगी होके। इतनी बात सुन के पद्मावत की सहेलियां कहन लागी बेवे गीता बिना तो लुखा खाण नहीं देंगी और वो परदेशी बलाना हमारे बस की बात को ना। उस मौके पे पद्मावत की सहेलियां मल्हार गाती हैं कैसे बला

ना कोई मल्हार ना थमगुंगी होके। इतनी बात सुन के पद्मावत की सहेलियां कहन लगी, बेवे गीता बिना तो लुखा खाण नहीं देंगी, और वो परदेशी बलाना हमारे बस की बात को जा। उस मौके पे पद्मावत की सहेलियां मल्हार गाती हैं, कैसे बला।

नदीम श्रवण का संगीत था श्रोताओं, नजर के सामने जिगर के पास। श्रोताओं, नजरों का तो पता नहीं, लेकिन आप तमाम आकाशवाणी हिसार से मोहब्बत करने वाले संगीत प्रेमी हमारे जिगर के पास जरूर रहते हैं। बहरहाल, आप सुन रहे हैं ये फरमाइश का आज का ये अंक अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ के साथ। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगले श्रोताओं की इस प्रेम भरी गुजारिश को। और हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये ईमेल हम तक पहुंची है। बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा की। इन तमाम श्रोताओं के साथ श्रोता शामिल हो रही हैं।

हमारी श्रोता रश्मि झरना राजकोट गुजरात से के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। बहरहाल इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नक्सा नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, मदीब हसन और तमाम परिवार के सदस्य कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रहेंगे सहदेव, शशिकला और सुमेध कुमार। इन तमाम श्रोताओं के साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता जुड़ते हैं। श्रोता रहेंगे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगेज खातून। गांव चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और तमाम शर्मा परिवार के छोटे बड़े सदस्य। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय धींगिया, संदीप मकड़, अनिल जैन और दर्शन भाई भाई परिवार के साथ तमाम मित्रगण भी इस एक ही संदेश में शामिल हो गए। और लीजिए अब अगली ईमेल हम शामिल करते हैं। नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज, हिमांशु और पवन सुधार की। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दिलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके पोते गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। गंज डुंडवारा यूपी से मास्टर बिलखिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानी शेख और अमन नाफरीदी कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से ईमेल हम तक पहुंची है और श्रोता रहेंगे मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज, गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। 1989 में आई फिल्म परिंदा का ये गीत अब आप सुनेंगे श्रोताओं। और गीत फिल्माया गया अभिनेता अनिल कपूर साहब और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जी पर। और आवाजें इस गीत में आप सुनेंगे सुरेश वाडेकर और आशा भोसले जी की। आरडी बर्मन साहब का मीठा मधुर संगीत रहेगा और खुर्शीद हलावरी ने इस गीत को लिखा है। तो आइए सुनते हैं परिंदा फिल्म का ये गीत।

भाई श्रोताओं, हम जो आपके लिए कहना चाह रहे थे और कहना चाहते हैं वही कह दिया खुर्शीद होलारी साहब ने। तुमसे मिलकर ऐसा लगा अरमान हुए पूरे दिल के। ए मेरी जाने वफा, तेरी मेरी, मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे ना होंगे जुदा। जी हाँ श्रोताओं, आपका हमारे साथ और हमारा आपके साथ ये रिश्ता

कभी भी जुदा नहीं होगा। आप यूं ही सुनते रहेंगे आकाशवाणी हिसार और हम आपको सुनवाते रहेंगे यूं ही मीठे मधुर मन भावन दिल को छू जाने वाले गीत। आप सुनते रहें बस आकाशवाणी हिसार। इस सफर में आपका हम सफर हूं मैं शिवानंद वाशिष्ठ। और आइए श्रोताओं अब अगला गीत आप तक पहुंचेगा। श्रोताओं रिश्ते वक्त के साथ और भी गहरे होते जाते हैं और श्रोताओं प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने में महसूस होता है। अब जो गीत आपको सुनवाएंगे वो रिश्तों की उसी मिठास से भरा हुआ है। उम्र भर साथ निभाने के एहसास को बहुत सादगी के साथ में गीतकार आनंद बख्शी साहब ने लिखा और भावुक कर देने वाले श्रोताओं बोल जो हैं वो आनंद बख्शी साहब की कलम से लिखे गए और उतना ही दिल को छू जाने वाला संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। बहरहाल आवाजें आप सुनेंगे इस गीत में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। बहरहाल फिल्म का नाम मैं बताऊंगा आपको उन तमाम श्रोताओं के नाम के बाद। तो श्रोता शामिल हो रहे हैं इस मीठे मधुर रिश्तों से के एहसास से भरे गीत के साथ। डाब की रोड़ा कोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर कुमार गौरव मंदूरकर और इन तमाम श्रोताओं के साथ गांव ही परसोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी सायरा बानो शेख करिश्मा शेख कार्यक्रम से जुड़ते हैं। रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा नंद किशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे जयश्री महित्रे अंजलि करवा बाला साहेब करवा ये तमाम श्रोता रहेंगे। बीड शहर महाराष्ट्र से और गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल इंद्रा मुकेश दिनेश अंशु और बलदेव कटारिया कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ अजीत कसाना माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना ये तमाम श्रोता रहेंगे ग्राम पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद यूपी से। और इन तमाम श्रोताओं के साथ लीजिए मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा 17 एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक कार्यक्रम से जुड़ते हैं। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से हमारे श्रोता रहेंगे रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला नवानकर विशाल नवानकर मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन्ना और परिवार के तमाम सदस्य। जिला हांसी दुर्गा कॉलोनी से हमारे श्रोता रहेंगे राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी और दादरीगेटी जिला भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे ये श्रोता जो लिखते हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीसु तासो अर्णव आनंद सत्यमानंद बहुरछा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। इन तमाम श्रोताओं के साथ जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी आसमान अंसारी मोहम्मद कैफ अंसारी और लीजिए धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया और आयान बाबू कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन्हीं श्रोताओं के साथ हम शामिल कर लेते हैं गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता करण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई के इस संदेश को। कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी शकील अंसारी बुशरा अंसारी हिना अंसारी गुलिस्तारानी नंदनी अंजलि और तमाम सदस्य कार्यक्रम के जुड़ते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं 1983 में आई फिल्म अवतार का वो गीत जिसे फिल्माया गया अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेत्री शबाना आजमी जी पर।
किशोर कुमार और लता जी के दिलकश स्वर आप इस गीत में सुनेंगे।

अपनेपन मोहब्बत से भरा ये खूबसूरत नगमा आकाशवाणी हिसार की ओर से आप तमाम श्रोताओं के नाम।

अपनेपन के एहसास से भरा हुआ श्रोताओं, आपने गीत सुना। अवतार फिल्म से इस गीत को लिया गया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की दिलकश आवाजें थी। राजेश खन्ना और शबाना आजमी जी पर ये इस गीत को फिल्माया गया था। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। और श्रोताओं, अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है खास आपके लिए। और श्रोताओं, इस गीत की खास बात ये रहेगी कि ये उस समय का गीत है श्रोताओं, जब इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, और समय आज के समय से 100 गुना कहीं बेहतर था। श्रोताओं, इंतजार रहता था चित्रहार पर कब गीत सुनेंगे, फिल्म का शेष भाग अगले हफ्ते कब देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये वो सुनहरा दौर था। और उसी दौर का एक और दिल को छू जाने वाला गीत आइए सुनते हैं। पसंद हमारे इन तमाम चाहने वालों की रहेगी जो लिखते हैं हमें radiohisar@gmail.com पर अपनी फरमाइश। और लीजिए, इस क्रम में हमारे श्रोता रहेंगे नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़। और इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ेंगे रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता जी। इन तमाम श्रोताओं के साथ जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोदी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान।

और दिशा गोस्वामी कार्यक्रम से जुड़ रही हैं। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से हमारे श्रोता रहेंगे और इन्हीं के साथ रहेंगे जिला मोतिहारी बिहार से संदीप कुमार और संजय कुमार सिंह। और इन श्रोताओं के साथ लीजिए अब शामिल कर लेते हैं हमारे इन श्रोताओं की इस फरमाइश को। ग्राम बकानी खुर्द आंवली कला भवानी मंडी झालावाड़ा राजस्थान से हमारे नए श्रोता कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। हमारे श्रोता रहेंगे क्लासिक रेडियो श्रोता संघ के ये तमाम श्रोता हैं, राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर राहुल, चंदू देवराज, लक्ष्य और समस्त ग्रामवासी। तो इन तमाम श्रोताओं को शामिल करते हैं हम कार्यक्रम में। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहान, मास्टर अजहर खान और अजीम खान कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ जुड़ते हैं अनारकली बाजार जगराओं से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सूचा सिंह पाठक। और लीजिए अगली ईमेल हम तक पहुंची है। हमारे श्रोता रहेंगे जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित। और लीजिए एक ईमेल और शामिल कर लेते हैं हम मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत प्रवीण। तो इन तमाम श्रोताओं के साथ ये मिलकर सुनते हैं उस सुनहरे दौर का ये सुनहरा गीत। और श्रोताओं मोहब्बत में दिल धड़कता है, निसंदेह धड़कता है और दुगनी रफ्तार के साथ धड़कता है। जब मोहब्बत पहली बार हो तो दिल के एहसासों को छू जाती है, रातों की नींद कहीं खो जाती है और हर धड़कन में बस अपने प्रियतम का नाम ही सुनाई देता है। ऐसे ही मीठे एहसासों से भरा हुआ ये गीत है श्रोताओं। आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की मधुर आवाजें आप सुनेंगे, आनंद मिलन का संगीत रहेगा और समीर अंजान साहब ने दिल को छू जाने वाला ये गीत लिखा। तो आइए सुनते हैं दिल फिल्म का हमारे तमाम दिल वाले श्रोताओं के साथ ये गीत।

गीतकार ने कितना सच लिखा श्रोताओं। दिल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं थे और कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति रहेगी श्रोताओं। अब गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद से हमारे श्रोता रहेंगे अंतिम फरमाइश के साथ जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। इन तमाम श्रोताओं के साथ सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग कार्यक्रम से जुड़ते हैं। गांव गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और इन्हीं श्रोताओं के साथ कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के लिए कस्बा गुनोर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इन तमाम श्रोताओं के साथ हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं गाँव कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश के साथ। गाँव जेवरा जिला हिसार, वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण और मनोज भ्याण। हरिनगर गीता की नगरी कुरुक्षेत्र से हमारे श्रोता रहेंगे सुरेंद्र अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म में रहेगी साजन, अनुराधा पौडवाल की दिलकश आवाज। समीर साहब ने इस खूबसूरत गीत के शब्दों को लिखा। नदीम श्रवण का उतना ही खूबसूरत संगीत आप सुनेंगे।

आप बने रहें श्रोताओं इसी गीत के साथ और ईमेल्स से सजे हुए इस फरमाइशी और खूबसूरत सफर को अब यहीं समाप्त करने की। अपने आज के इस सफर के हम सफर शिवानंद वाशिष्ठ को दें अनुमति। आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी हिसार। नमस्कार।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है।

0: श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said government has made special provisions